दोस्तों, बचपन के दिन भी कितने प्यारे थे ना, जब ना किसी तरह की कोई टेंशन थी, सिर्फ अपनी ही धुन में घूमते रहना, खेलना, थोड़ा पढ़ना और फिर सो जाना। आइए महसूस करते हैं अपने बचपन को इस गीत के द्वारा, जो गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। फिल्म है मैम दीदी।

आपने गीत सुना। दोस्तों, सुख में तो हर कोई साथ होता है, पर व्यक्ति तो वो है जो दुख के समय भी काम आए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गोपी से ये गीत।

0: दोस्तों, उतार चढ़ाव तो इस सफर का हिस्सा है। कभी रास्ता मखमली होता है तो कभी कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ, पर असली मजा तो इस सफर को तय करने में है। तो उठिए, मुस्कुराइए और एक नए हौसले के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है।
1: बम बम मकाक, बम बम मकाक, बम बम मकाक, बम बम मकाक, बम बम कक कक, अरे बम बम कक कक।

किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म चलती का नाम जिंदगी से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट

0: पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices.

0: చాలా బాగా పాడుతున్నారే.
1: పైషజ్యం మంద్రం. ఆ

हर सुर की अपनी एक कहानी होती है, हर गीत किसी न किसी याद से जुड़ा होता है, और हर नई सुबह लेकर आती है एक नया एहसास। नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों। रंगों से सजी, सुरों से बसी इस हसीन महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूं आपका दोस्त RJ JD, यानी जयदीप। और अगले कुछ लम्हे हम साथ मिलकर करेंगे बातें जिंदगी की, संगीत की, कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खास दिनों के याद, और बेशक आपके पसंदीदा गीतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। तो चाहे आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, सफर पर हो, या बस एक कप चाय के साथ ही खूबसूरत मौसम को लुत्फ़ उठा रहे हो, बस बने रहिए FM रेनबो 101.9 के साथ, क्योंकि यहाँ हर सुर जिंदगी के हर रंग को और भी खूबसूरत बना देता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूं जेडी। आज 30 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है। चलिए स्पेस की इस इंटरेस्टिंग दुनिया के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले एस्ट्रॉइड होता क्या है? एस्ट्रॉइड स्पेस में मौजूद पत्थर और मेटल के बड़े टुकड़े होते हैं जो ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच के रीजन यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूमते रहते हैं। अब एस्ट्रॉइड, मीटियोर और कॉमेट में क्या फ़र्क है? एस्ट्रॉइड स्पेस में रहता है। जब उसका कोई टुकड़ा अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और जलते हुए चमकता हुआ उसे मीटियोर या शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर वो जमीन तक पहुंच जाए तो वो मीटियोराइट बन जाता है। वही कॉमेट बर्फ, धूल और गैस से बना होता है। जी, जो कॉमेट होता है ना, बर्फ, धूल और गैस से बना होता है। सूरज के पास आते ही उसकी खूबसूरती चमकती है एकदम। एक उसके जो टेल का नज़ारा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो चलिए, आज का जो एस्ट्रॉइड डे है यानी कि जो स्पेस से रिलेटेड है, तो हम भी कुछ स्पेस से रिलेटेड गाने बजाएंगे। अब सुनते हैं काउंटिंग स्टार्स फ्रॉम वन रिपब्लिक।

30 जून को एस्ट्रॉइड डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1908 यानी 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का रीजन में एक पावरफुल, एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड एक्सप्लोजन हुआ था जिसने हजारों पेड़ और पहाड़ों को तोड़ दिया और गिरा दिया था। और आज भारत भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए स्पेस रिसर्च में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है और चल रहा है।

स्पेस हमारा सिर्फ नया राज ही नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और साइंस की ताकत भी है, और उसका याद भी दिलाता है। तो आसमान को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर डिस्कवरी की शुरुआत एक सवाल से ही होता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्योंकि अगर सवाल नहीं होगा तो जवाब कहाँ से होगा? तो चलिए इसी टॉपिक पे हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, ये तारा वो तारा। जी हाँ, स्पेस में सब कुछ जो भी रहता है, एस्ट्रॉयड, कॉमेट या नहीं तो मीटियोर, जो कुछ भी, हमारे लिए तो सब कुछ तारे ही हैं। तो जी हाँ, तो चलिए हम एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, ये तारा वो तारा, बाय उदित नारायण, और ये मूवी है स्वदेश का। चलिए

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, तारा वो तारा। तो हाँ दोस्तों, तारों से याद आया, मैं बहुत टाइम से, बचपन से, हमेशा ही रात में जब सब सो जाते हैं तो चुपके से आसमान देखने के लिए मैं छत पे चला जाता था, धीरे से, क्योंकि आवाज़ ना आए, क्योंकि पैरों की आवाज़ भी आने से माँ उठ जाती थी। तो एकदम धीरे से ऊपर चल जाता था, 11 12 बजे ऐसा। और उस टाइम पे तारों तारे देखने का मज़ा ही बहुत मस्त रहता है, और साथ में बादल और चांद, और वो एक सन्नाटा बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड हाँ, जो लोग नाइट आउल्स हैं, जो लोग नाइट शिफ्टर्स हैं, और जिन लोगों को जो जो लोग रात के लोग हैं, उनको तो शायद ये एहसास पता ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिलसिले के साथ। आज 30 जून को एक और भी चीज़ है जो स्पेशल है, हम सब के फेवरेट, आप सबको पता ही होगा, माइक टाइसन के बारे में। जी हाँ, माइक टाइसन जी का बर्थडे है आज। आज 30 जून को बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन अपने जन्मदिन मना रहे हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे सबसे यंगेस्ट हैवी वेट चैम्पियन बने, और उनकी स्पीड, पावर और अग्रेसिव स्टाइल ने बॉक्सिंग की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। उनके उनके कई मुकाबले सिर्फ कुछ ही

मिनट्स, जी हाँ, सिर्फ कुछ ही मिनट्स के होते हैं और कभी कभी तो कुछ सेकेंड में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल थे और दिखने में भी इतने ज्यादा खतरनाक थे कि आगे वाले की ना टाई टाई फिस हो जाती थी। तो जी हाँ, माइक टाइसन, तो आप अगर सुन रहे हो तो आप अपने, अगर अगर कोई जेंजी सुन रहा है ना, तो अपने पिताजी से पूछिए, उनके फादर से पूछिए, उनको जरूर पता होगा और जरूर वो भी माइक टाइसन के फैन रहे ही होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो जी माइक टेसन जी को हैप्पी बर्थडे आकाशवाणी एफएम रेनबो के तरफ से और हम सभी लिजनर्स की तरफ से भी। और हम आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत गाना, जो कि हाँ माइक टेसन का तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके ही बराबरी का है। सुनिएगा और खुद ही जानिएगा। और लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे साथ जुड़े हैं सरवर अली जी और वो हमें मैसेज करते हैं, एक कैसेट, एक फोटो भेजा उन्होंने, जो कि मैंने पहला सॉन्ग बजाया था ओम शांति ओम कर्ज का, और उन्होंने वो कैसेट भेजा और उनके पास एक रेडियो है बहुत ही पुराना, वो बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सरवर अली जी, सुनते रहिए। और दोस्तों, आप भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, या नहीं तो कुछ भी बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि 4023234822 है। मैं एक और बार दोहरा देता हूँ, 4023234822। आप हमको मैसेज कर सकते हैं और जी हाँ, मैं सबके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगा। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

क्या बोलते हो दोस्तों, माइक टेसन की बराबरी का गाना था ना वो, एकदम पावरफुल। जी हाँ, हमारे मिल्खा सिंह भी कुछ कम नहीं थे, आप सबको तो पता ही होगा। और हाँ, मैं तो सच्ची में सजेस्ट करता हूँ सभी को कि ये मूवी सारे लोग देखो। मेरे ख्याल से मैक्सिमम सारे लोग देख ही चुके होंगे, एक और बार देख लो यार। जितने बार भी देखो ना, उतने बार मोटिवेशन आ जाता है। और ताकि एटलीस्ट एक हफ्ता या 2 हफ्ता तो लोग जो है ना एक्सरसाइज करना चालू कर दे, फिटनेस की ओर बढ़ना चालू कर दे, 1-2 हफ्ता ही सही। जी हाँ, क्योंकि हम तो हमेशा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जी हाँ, हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो माइक टाइसन के बारे में हम जब बात कर रहे थे, आप जानते हैं दोस्तों, माइक टाइसन की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, व्यक्तिगत संघर्ष, विवाद और मुश्किल दौर भी आए हैं। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, अपनी गलतियों से सीखा और एक नई शुरुआत की। आज वो सिर्फ एक चैंपियन बॉक्सर ही नहीं, बल्कि रिसाइलेंस और कमबैक का भी प्रतीक मानते हैं, माना जाते हैं। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली चैंपियन वो नहीं होता कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हर गिरने के बाद दोबारा कभी खड़ा होना सीख लेता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे हिंदी बॉलीवुड में भी तो है, हार कर जीतने वाले के ही तो बाजीगर कहते हैं। तो वो कहाँ मजा कहाँ है अगर हम कभी हारे ना। हारेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि जीत क्या होती है और जीत की वैल्यू क्या होती है। तो जी हाँ, माइक टायसन हमें यही सिखाते हैं। हम सबकी तरफ से एक और बार माइक टायसन जी को हार्दिक हार्दिक बधाई उनके जन्मदिन की। तो जी दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, इतना ही पावरफुल जितना माइक टायसन का पंच हो।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो जी हाँ, आप सभी तो जानते ही है, जेडी यानी कि माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन। तो हाँ, अभी मैं हूँ आरजे सीट पे, तो कैसे नहीं बजाऊंगा एमजे जी के गाने। तो हाँ, अभी सुनते ही रहेंगे, आप आते रहेंगे उनके गाने ज़रूर। लेकिन हाँ, आप सबकी फरमाइशें भी ज़रूर मैं पूरी करूँगा। लेकिन हाँ दोस्तों, हम अभी बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, जो कि है वन महोत्सव हफ्ता, जो चालू होता है, जो शुरू होता है कल से, यानी 1 जुलाई से शुरू हो रहा है वन महोत्सव वीक, जो हर साल 1 से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जाता है। दोस्तों, वन महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना भी है। पेड़ हमें साफ हवा देती है, बारिश को संतुलन को बनाना सिखाता है, मिट्टी का कटाव रोकता है, और हजारों जीव जंतुओं का घर होता है। आज जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पूरी दुनिया में इतने बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं, इतने बहुत भयंकर हालातों में फैल रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है और हमारा जो क्लाइमेट चेंज का है अचानक से, वो सभी इसी कारण है जो हम पेड़ पौधे काट देते हैं। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है पेड़ पौधे काटना। दोस्तों, अब ये हफ्ता वन महोत्सव वीक, ये हमें एक ऐसा प्रेरणा देता है, ये हमें एक ऐसा मैसेज देता है, हम लोगों को एक ऐसे रास्ते में चलने के लिए दिखाता है कि हम

हमें पेड़ पौधे और जंगलों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना खुद का रक्षा नहीं कर सकते और हम उनके बिना जी नहीं सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी हुई, हमारी प्रमुख जिम्मेदारी हुई कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी से खूबसूरती है, इसी से जीवन है और इसी से धरती है। बिना पेड़ पौधे और बिना जंगल के कोई इंसान नहीं बचेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो पेड़ पौधे जितना हो सके उतना बचाइए और जितना हो सके उतना लगाइए और उनका देखभाल भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी सिलसिले में हम एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं।

दोस्तों, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 यानि कि 1950 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी और उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने की थी। तब से लेकर आज तक हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस वन महोत्सव हफ्ता पर एक छोटा सा संकल्प लीजिए, कम से कम एक पेड़ लगाइए, ज़रूर लगाइए। और सिर्फ लगाना नहीं, उसका देखभाल भी कीजिए। याद रखिए, पेड़ लगाना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन उसे बड़ा बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी देश की आबादी कम से कम 150 करोड़ की है। सिर्फ एक पेड़, कम से कम एक पेड़ एक जन लगाएगा तो सोचिए कितने पेड़ लगेंगे, कितना ज़्यादा हेल्प होगा हमारी धरती माँ को। तो दोस्तों, इसीलिए कृपया करके ये हमसे एक विनती है, पेड़ पौधे बचाइए और जीवन बचाइए। तो चलिए एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, अर्थ सॉन्ग, जहाँ पर माइकल जैक्सन का ये सॉन्ग हमें बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचर।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कुछ दिन पहले महसूस की है। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं गया था अंबुबाची मेले को। जी हाँ, अंबुबाची मेला होता है कामाख्या के मंदिर में। कामाख्या मंदिर वहाँ है जहाँ पर गुवाहाटी असम में है। जी, तो मैं गया था पिछले हफ्ते असम को अंबुबाची मेले को अटेंड करने के लिए, जो कि है कामाख्या के मंदिर में। और वो वाला अनुभव इतना इतना इतना ज़्यादा खूबसूरत था, और इतना अनुभव इतना मतलब मैजिकल था, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, वहाँ पर जो है ना, इतना धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में इतना बहुत मज़ा आया। इस दौरान यहाँ पर माना जाता है कि माँ कामाख्या को वार्षिक रजस्वाल यानी कि पीरियड्स का काल होता है। इस वजह से मंदिर को 5 दिन तक बंद किया जाता है। तो साल में एक बार इस मंदिर को बंद किया जाता है 5 दिन के लिए, जहाँ पर माना जाता है कि माँ कामाख्या को वार्षिक रजस्वाल का काल होता है दोस्तों। और फिर दर्शन के लिए इतने सारा भीड़ जमा हो जाते हैं, इतने सारा भीड़, करीब करीब 8 से 10 लाख तक लोग जमा हो जाते हैं सिर्फ वो 5 दिन में। और मैं वहाँ पर शामिल था उन 10 लाख लोगों में। वो अनुभव इतना अनोखा था और इतना शक्तिशाली अनुभव था। दुनिया भर से, जी हाँ, सिर्फ देश भर से नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं पर्यटक वहाँ पर। साधु आते हैं, संत आते हैं, तांत्रिक आते हैं, सभी लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए, कुछ लोग शक्ति प्राप्ति के लिए और कुछ लोग ये मेले का अनुभव करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत था। तो दोस्तों, वैसे तो थोड़ी सी गर्मी कम हो रही है और बारिश का मौसम चालू हो रहा है, तो यानी हम अभी बाहर निकलने जा सकते हैं घूमने के लिए। तो मैं आने वाले इस प्रोग्राम के आगे मैं बताऊंगा कि किन किन जगहों पर आप जा सकते हैं ऐसे मौसम में, यानी कि मॉनसून के मौसम में, जो कि जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, लाइक वंस इन ए लाइफ टाइम वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गानों के सिलसिलों के साथ। सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा, बड़े अच्छे लगते हैं, बाय अमित कुमार।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे जीडी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो जब मैं हम जी हाँ हम बात कर रहे थे अंबुबाची मेले के बारे में, जो कि होता है कामाख्या मंदिर में, जो कि स्थित है गुवाहाटी आसाम में। तो सबसे खास बात जो मैंने महसूस की वो थी वहाँ का माहौल। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु, सधुस और साधु लोग, पर्यटक, तांत्रिक लोग एक ही जगह पर नज़र आते हैं।

हर चेहरे पर आस्था थी, हर गली में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मुझे मंदिर के प्रांगण और परिसर में जाने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, मुझे मंदिर के अंदर जाने का मौका भी मिला। दर्शन उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ की शांति और आध्यात्मिकता, वातावरण अपने आप में ही यादगार अनुभव था। कभी-कभी किसी यात्रा की सबसे बड़ी याद सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि उस सफर में महसूस की गई भावनाएं होती है, और अंबुबाची मेले ने मुझे ये एहसास दिलाया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम अपना सफर जारी करते हैं, और मैं आप सभी को बता दूं, आज एक स्पेशल इंटरव्यू होगा जो है हिमांशु वर्मा जी आने वाले हैं, और वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है। तो जी हाँ, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर जो हम सब ने मनाया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिवस का, और वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही शुरुआत किए थे, और वो साउथ इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो जी हाँ, हम उनसे इंटरव्यू बहुत जल्द चालू करते हैं, उससे पहले सुनिए एक संदेश।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस हमारे स्टूडियोस में। टाइम हो रहा है 11:31। जी हाँ दोस्तों, और अभी हम इंटरव्यू करेंगे हिमांशु परवाल जी को, जो कि अभी मौजूद है हमारे स्टूडियोस में। बहुत स्वागत है हिमांशु जी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हिमांशु जी जो है वो एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्टअप की और बहुत सक्सेसफुल हुए इसमें। और उनको शिल्पा शेट्टी जी के थ्रू साउथ इंडिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला है कुछ दिन पहले। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं।

0: हिमांशु जी, आप अपने श्रोताओं को अपना परिचय दें और अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। आपने जब आपका स्टार्टअप शुरू किया, आपने माइक्रो एंटरप्राइजेस के मैं जब आपने कदम रखा, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो जी हिमांशु जी, बताइए।
1: सो माई सेल्फ हिमांशु एंड मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में। एंड वो टाइम पे जो बिजनेस था वो मेरे को बहुत फैसिनेट करता था। लाइक आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट, बट ऑब्वियसली बिजनेस नीड्स कैपिटल। सो कैपिटल था नहीं तो कैसे कर सकते। तो जैसे ही आप सब लोग भी यहाँ पे करे होंगे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इंटरनेट से, सो मैं भी सेम चीज़ किया। एंड वहाँ पे लिस्ट आती है जिसमें आता है ड्रॉप शिपिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब। सो आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो लिस्ट में जो भी है। ठीक है, अब एक चीज़ था अफिलिएट मार्केटिंग, आई हैव डन दैट अलॉट एंड आई ऑल्सो रोट अ बुक ऑन दैट जो पब्लिश्ड है। बट द पॉइंट इज, सात बिजनेस में किया एंड सब फेल हो रहे थे, किसी में पैसा बना नहीं। बस अब वो एक डीमोटिवेशन भी आ रहा था, घर पे भी एक था कि
0: जी
1: पढ़ाई करो, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज परस्यूइंग सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
0: जी
1: बट वहाँ से करते करते मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं, बट आई वॉज ए वेरी गुड एवरेज स्टूडेंट। लाइक 80% का मैं बच्चा था वहाँ पे। बट इन द एंड मेरे को पता था कि भाई जॉब से आई कैन नॉट अचीव व्हाट आई ऑलवेज वॉन्टेड।
0: जी
1: सो आई स्टार्टेड डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस। बट जो 8th बिजनेस था, जहाँ पे मैं एंटर करता हूँ ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग पहले खुद सीखा, फिर मैं सिखाना भी चालू करा। मेरी एक एकेडमी भी है एंड राइट नाउ वी आर एट इन हैदराबाद नंबर वन। वी ऑल्सो गॉट अवार्ड फ्रॉम शिल्पा शेट्टी दैट
0: जी
1: इन होल साउथ इंडिया आवर अकेडमी इज एट द टॉप राइट नाउ।
0: जी हिमांशु जी, बहुत अच्छा। और मुझे आपको उद्यमी बनने की जो प्रेरणा थी, मोटिवेशन थी,

0: वो आपको कहाँ से मिली है? कि आपने कहाँ से सोचा कि आपको एक उद्यमी बनना है?
1: जब देखता था बाहर के लोग, नॉट इंडिया यंगस्टर्स, बाहर के लोग, वो लोग
0: जी
1: है 19 साल के, 20 साल के, दे आर मेकिंग 20-30 लाख इन अ मंथ थ्रू ऑनलाइन. बस मैं सोचा कि भाई मेरे को भी यही करना है, बिकॉज इंडिया में मैं किसी को जानता नहीं था मेरी एज का जो इतना पैसा बना रहा है.
0: जी
1: ठीक है, एवरी वन वेज लाइक एवरेज जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं, एंड मेरे को ये चीज़ करना था नहीं. बट मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी एज अ डांस इंस्ट्रक्टर. मैं जुम्बा सिखाता था, तो डांस इंस्ट्रक्टर पे मैं 3 महीने किया, एंड 3 महीने मेरे को इतना वहाँ पे मेहनत करना पड़ा. रोज 3-4 घंटे वहाँ पे डांस करो, और लास्ट में महीने के एंड में आते हैं 4-5 हज़ार रुपये. उसके लिए मैं इतना कर रहा था. तब मेरा एक दोस्त था, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो वो 3-4 दिन में ही वॉज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज़. वो देख के मेरा दिमाग घूम गया, और लगे थोड़ा मेरे को भी करना है. तो तब का तब मैं घर पे आया, एंड आई
0: जी
1: वॉज नॉट 18+, सो मेरी मॉम के नाम पे आई हैव ओपन्ड अ डीमैट अकाउंट, एंड वहाँ पे मेरे पास कुछ 12,000 रुपये थे, वहाँ से मैं स्टार्ट कराऊँ.
0: जी, वाह, बहुत बहुत बढ़िया हिमांशु जी। वाकई में बहुत ही दिलचस्प है आपकी कहानी, क्योंकि आपने अपना स्टार्टअप के लिए इतना जो सोचा आपने उस उम्र में, वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो हिमांशु जी, आप बताइए, आपने जब अपने व्यवसाय के लिए जो अवसर की पहचान की, क्योंकि देखिए, मेरे ख्याल से आजकल की जो पॉपुलेशन है, आजकल की जो जनता है, ऐसे लोग मतलब चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाएं। आप अपने टैलेंट को कैसे पहचानते हैं और सही रास्ता कैसे चुनते हैं, और आपने कैसे चुना, कृपया करके हमें बताइएगा।
1: पहले तो सही रास्ता क्या है वो एज पे किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया ना कि ये मेरे लिए सही रास्ता है. मैं बस
0: जी
1: अलग अलग रास्तों पे चलता गया. लास्ट में मुझे लगा कि भाई इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, इसमें मैं दिन रात एक कर सकता हूँ. वो था ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में मैं दिन भर चार्ट्स भी देखता था, दिन रात. मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक बैठे सो, मेरे को उसमें मज़ा आ रहा था. तो मैं सोचा यही है अब मेरा रास्ता. वहां से मैं ये चीज स्टार्ट किया. तो
0: जी
1: अगर एक यंगस्टर्स को अगर अपना रास्ता ही ढूंढना है, भाई देखो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर रास्ता है नहीं. आप अभी, आपकी एज अगर कम है, यूथ हो, ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, आप रिस्क ले सकते हो, आप
0: जी
1: एक्सपेरिमेंट करो, आप अलग अलग चीजें ट्राई आउट करो. अभी तो ये जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. पहले के जमाने में तो बस 4-5 अपॉर्चुनिटीज थी, या
0: जी
1: तो
0: जी
1: सीए
0: जी
1: बन जाओ, या तो इंजीनियर, या तो डॉक्टर, या तो लॉयर, दैट्स इट.
0: जी
1: नाउ देर आर लिमिटलेस, स्काई इज द लिमिट. इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप एक्सप्लोर करके देखो. इंटरनेट इंटरनेट नॉट ओनली फॉर वॉचिंग द रील्स मूवीज. इंटरनेट के सही यूज
0: जी
1: करोगे, यू कैन बीट योर 9 to 5. आप 1 साल की इनकम 1 महीने में कमा सकते हो.
0: जी आपने बहुत सही कहा हिमांशु जी, क्योंकि आजकल के लोग बस स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, पता नहीं इन लोग थक नहीं जाते स्क्रॉल करते करते। लेकिन हिमांशु जी, आप मुझे बताइए, तो ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप हमें बता रहे हैं जो श्रोताओं को साझा करें, जो इंटरनेट पे हमें अवसर मतलब प्रदान कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से हम ले सकते हैं, ऐसे कौन से अवसर है, कृपया बताइए।
1: इंटरनेट पे आज का जमाना किसका है? एआई का है.
0: जी
1: बट हम सब लोग एआई को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं. मतलब चैट जीपीटी से अपन अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आंसर करवा रहे हैं. भाई एआई से आप एक वेबसाइट बना सकते हो. आपको पता है वेबसाइट बनाने के चार्जेस कितने होते हैं जो एजेंसीज चार्ज करती है? इट्स अराउंड 80,000, 1,50,000, ऐसे होते हैं. बट जो एक क्लाउड बोल के एक एआई है, उस
0: जी
1: पर यू
0: जी
1: कैन मेक द वेबसाइट इन जस्ट 5 मिनट्स. ठीक है, आपका
0: जी
1: खर्चा उस पर कुछ नहीं आने वाला है.
0: हाँ जी
1: आप एक बेस्ट बिजनेस आपके लिए प्लान ये हो सकता है, आपके घर के आसपास देखो कोई अच्छा शोरूम है जो जिनकी वेबसाइट नहीं है. फाइंड दैट लूप होल. क्लाउड पे जाओ, उसकी वेबसाइट का पूरा डिटेल्स भेजो, उसके बिजनेस का डिटेल्स भेजो, उसकी वेबसाइट बना लो. फ्री में बनेगी, आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा. अच्छी सी वेबसाइट बना के दुकान वाले के पास जाओ कि सर हम आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, इसका आप दे दीजिए
0: जी
1: बस हमको 5 से 10 हज़ार,
0: जी
1: आपकी
0: जी
1: इनकम चालू हो गई. फ्री में बस इंटरनेट का यूज करें आप लोग.
0: जी जी
1: दिस इज द
0: वाकई में
1: अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, बस देखना
0: जी
1: आना चाहिए.
0: जी समझ गया। वाकई में सोचने वाली बात है, इतना मतलब आसान है लेकिन लोगों को पता नहीं है। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से और हमारे ये FM रेनबो के माध्यम से लोग ज़रूर इसको सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि कितना आसान होता है अगर आपको रास्ता मिल जाता है। तो हिमांशु जी, आप हमें बताइए, आपके स्टार्टअप के टाइम पे जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो चैलेंजेस का सामना पड़ा, वो क्या-क्या थी?
1: पहली चुनौती तो यही है कि कैपिटल. ठीक है, एंड मैं तब यंग था, तो पढ़ाई का एक प्रेशर कि पढ़ाई भी करना है, करियर में सेट होना है. सो कैपिटल एक था मेरे लिए चुनौती. बट उसको टैकल करने के लिए मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं डांस एकेडमी ज्वाइन किया था, वहाँ पे सिखाता था. 5-6 हज़ार
0: जी
1: रुपये ही कमाया हूँ, लेकिन वही मेरा फर्स्ट कैपिटल था, वही 12

0: 1,000 रुपये से मैं स्टार्ट किया था। तो ये है कि चुना दिया तो हर जगह है, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है।
1: जी
0: अगर
1: जी जी
0: प्रॉब्लम्स ना है तो फिर अपनी जिंदगी बेकार है। प्रॉब्लम्स है तो जीने में
1: मजा है।
0: मजा है,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: फेस
1: जी
0: करने में मजा है।
1: बिल्कुल
0: प्रॉब्लम्स विल बी ऑलवेज बी देयर, यू हैव टू फेस।
1: जी, हिमांशु जी समझ गए। और हिमांशु जी, आपका जो व्यवसाय है उसकी जो सफलता है उसमें इनोवेशन का क्या योगदान रहा है, जो जो कि आजकल का नया टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और लोग इनोवेशन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो आपके व्यवसाय में इनोवेशन का क्या महत्व है?
0: इनोवेशन यू मीन टेक्नोलॉजी?
1: जी
0: एवरीथिंग रन्स, मेरे पास अभी जो चलता है वो, मेरी कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसमें माल है, मटेरियल है, इट्स एवरीथिंग ऑनलाइन। मेरी दुकान मेरी लैपटॉप है बस। दुनिया में कोई भी कोने में हूँ, आई कैन ओपन द लैपटॉप, कनेक्ट टू द इंटरनेट,
1: जी
0: सर्च द चार्ट्स, एंड आई कैन ट्रेड फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। सो टेक्नोलॉजी ही 90% मेरा बिजनेस जो चलता है, मेरी जो कमाई आती है, इट्स ऑल ऑन द टेक्नोलॉजी, लैपटॉप
1: जी
0: एंड इंटरनेट।
1: जी
0: यस
1: हिमांशु जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया आपने हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को, और आशा करता हूँ कि ये सभी लोग सुन रहे होंगे और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सभी के जीवन में काम आ सकता है, क्योंकि जॉब ही सब कुछ नहीं होता है, बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सब खेल बैलेंस का होता है। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और चलिए आपको भी ज़्यादा सा बोर ना हो, और हम ले चलते हैं आपको एक छोटे से गाने की तरफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु जी। तो चलिए हम अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं। तो हिमांशु जी, जो प्रारंभिक पूंजी की जो आपने बात की, मान लीजिए आप तो आपने तो उसको जमा कर लिया, आप काम कर रहे थे और उस आपने प्रारंभिक

0: पूंजी को प्राप्त कर लिया। लेकिन जो युवा व्यवसायी है, जो लोग नए लोग हैं, ये चाहते हैं कि व्यवसाय के जगत में सफलता को प्राप्त करें। तो जो प्रारंभिक पूंजी है, उसकी व्यवस्था कहाँ से की जा सकती है?
1: आपको स्टार्ट करना ही है, अगर आप यहाँ डिसीजन बना ही लिए हो
0: जी
1: जीरो से, तो इट्स वेरी टफ। बट आई
0: जी
1: थिंक जैसे मैं आपको अभी एक बेस्ट वे बताया, इंटरनेट तो सबके पास होगा, इंटरनेट को यूज करो। किसी के पास भी जाके आप एक फ्री में वेबसाइट बना के उनको, अगर उनको अच्छे लगे तो वो 5,000 आराम से दे देगा आपको।
0: जी
1: वहां से आप खुद का कैपिटल बिल्ड कर सकते हो, या फिर अगर इतना ही है, अगर आपको कोई जॉब भी नहीं दे रहा है, अगर आपको गाड़ी है तो डिलीवरीज मारो आप।
0: जी
1: क्योंकि अगर
0: जी
1: आपको कुछ करना है सो लिमिट्स के बाहर जाना ही है। क्योंकि कैपिटल जमा करना है तो बेसिक बेसिक जॉब करके ही एटलीस्ट एक 50,000 तो भी जमा करो आप,
0: जी
1: उससे आप
0: जी
1: कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू डू कुछ भी जॉब, अगर आपको करना है, कैपिटल जमा करना है तो आपको करना ही है। ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कल रातों रात अमीर बन जाऊंगा। देयर इज नो
0: जी
1: शॉर्टकट टू

0: करके ही एटलीस्ट एक 50,000 तो भी जमा करो आप,
1: जी
0: उससे आप
1: जी
0: कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू डू कुछ भी जॉब, अगर आपको करना है, कैपिटल जमा करना है तो आपको करना ही। ऐसा मत सोचो कि भाई मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कल रातों रात अमीर बन जाऊंगा। देर इज नो
1: जी
0: शॉर्टकट टू मनी एट ऑल,
1: जी जी
0: शॉर्टकट टू सक्सेस, मनी, दोनों भी।
1: जी जी समझ गया। देर इज़ नो शॉर्टकट टू मनी एंड देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जी हाँ हिमांशु जी, अगला सवाल आपसे ये है, डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया है, ये आपके उद्यम के लिए कैसे उपयोग करें? मतलब आजकल तो डिजिटल डिजिटल का ज़माना है भाई, और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये आपकी आपको किस तरह से उपयोग आए और हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए किस तरह से उपयोग साबित हो सकते हैं?
0: सोशल मीडिया जो है, आपको पता है कि कितने सारे लोगों का घर सोशल मीडिया के थ्रू ही चलता है। वो
1: जी
0: लोग रील्स
1: जी
0: बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं उनको। देखो पॉइंट यहाँ पे पैसा सिर्फ व्यूज का है। अगर आप बैठ के दिन भर खाली रील्स वगैरह देख ही रहे हो, सो यू
1: जी
0: आर जस्ट गिविंग मनी टू देम। आप क्या कर रहे हो? यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आप कुछ ऐसा चीज लेके आओ जो जिससे आपको लोग देखे ज्यादा। जैसे
1: जी
0: मेरे टाइम पे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के रिलेटेड लोगों को एजुकेट करता था सोशल
1: अच्छा
0: मीडिया पे, वहां से मैं थोड़ा वायरल भी हुआ, लोग मेरे को भी हैदराबाद में जानते भी है।
1: जी
0: सोशल मीडिया इसको सही से यूज करे तो ये सब कुछ है, अगर सही से यूज नहीं करोगे तो ये बर्बाद भी कर देगी। ऐसा इट्स वेरी
1: जी जी
0: एडिक्टिव, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज इट।
1: बहुत
0: हर
1: ही
0: हर
1: अच्छी
0: एक चीज
1: कहा।
0: का एडवांटेजेस है,
1: जी
0: डिसएडवांटेजेस भी है।
1: जी जी बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। हिमांशु जी, अब हम बात करेंगे, जब आप आते हैं मार्केट में, मतलब मान लीजिए अगर आपकी प्रारंभिक चुनौतियाँ वो ख़त्म हो गई है, आपको कैपिटल मिल गया स्टार्ट करने का और स्टार्टअप करने का भी मौका मिल गया, ठीक ठाक चलने भी लगा है, लेकिन जब बात आती है बड़ी कंपनियों की, जी हाँ, तो जहाँ पर ये कंपटीशन में आते हैं, तो उस समय आपको किस रणनीतियों को अपनाना पड़ता है, कैसे स्ट्रैटेजीज होती है जो होनी चाहिए जो आपका मार्केट में सर्वाइव कर सके, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए।
0: अगर कंपटीशन को बीट करना है हमें, तो
1: जी
0: या तो एक चीज़ है कि आपके पास कुछ एक ऐसी चीज़ हो जिसको बोलते हैं अपन यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आपके पास वो चीज़ है तो यू कैन बी इन द कंपटीशन। अगर
1: जी
0: आप एक कॉमन चीज़ ही बेच रहे हो जो जिसमें आपका कुछ यूएसपी नहीं है, बट अगर आपके पास ऑडियंस है,
1: जी
0: सो आपका यूएसपी क्या होगा, उसमें ऑडियंस को कैसे लेके आए, दैट शुड बी योर यूएसपी। दो तरीके के यूएसपी है, या तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस इज यूएसपी,
1: जी
0: या तो योर वे ऑफ सेलिंग इज योर यूएसपी।
1: जी
0: अगर ये दोनों भी नहीं है, सो आई बिलीव लाइक अगर बड़े कंपनीज है, सो इट्स बेटर नॉट टू हैव कॉम्पिटिशन रादर देन कोलैबोरेट विद देम।
1: जी
0: बिकॉज अगर साथ में है आप लोग, आपका कॉम्पिटिशन और आप साथ में है, दोनों का फायदा होगा।
1: जी
0: लेकिन कॉम्पिटिट करना है सो आपके पास कुछ एक तगड़ी चीज चाहिए जो किसी के पास नहीं है, लोग
1: जी
0: मर के आपके पास है, तब
1: जी
0: जाके आपका बिजनेस टॉप पे रहेगा।
1: जी मैं समझ रहा हूँ हिमांशु जी, आप बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई यूनिकनेस होना चाहिए, है ना? तो जी हाँ, हमारा अगला सवाल ये है आपसे कि अगर आपने एक छोटी कंपनी स्टार्ट कर दी, और सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो उसको कैसे निश्चित किया जाए, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है?
0: पहले खुद
1: जी
0: इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वाली सीन हो गया। द पॉइंट इज, अगर
1: जी
0: आप कोई भी चीज बेच रहे हो, किसी को आपकी सर्विस बेच रहे हो, फर्स्ट यू शुड यूज दिस। अगर आपको सही लग रही है मतलब सामने वाले को भी पसंद आएगी।
1: जी
0: अब मैं, मेरी सर्विस की अगर मैं बात करता हूँ, मैं जो सिखाता हूँ वो मैं खुद करता हूँ और मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे पास पे आउट के सर्टिफिकेट से कल ही
1: जी
0: मेरा एक पे आउट आने वाला है, तो इट्स वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई एम फॉलोइंग दैट। सो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स जो जिनको मैं सेम सिखा रहा हूँ।
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: नहीं कि मैं उनको एबीसी सिखा के मैं कुछ रॉकेट साइंस लगा रहा हूँ, इट्स
1: जी
0: एवरीथिंग सेम। सो फर्स्ट इट्स वर्किंग फॉर यू, आपको सही लग रही है, सो आपके लोग को भी वैसे अपन वैल्यूएट कर सकते हैं।
1: जी समझ गया। तो हिमांशु जी, जब रोजगार सृजन की बात होती है, मतलब रोजगार क्रिएशन की बात जब बात होती है, आपके एंटरप्राइज जो है इसने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए? मतलब क्योंकि यूजुअली तो लोग यही सोचते हैं स्मॉल एंटरप्राइज यानी कि रोजगार, तो आपका आपका जो व्यवसाय है ये किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है?
0: ओके, सो अभी मेरे पास, मैं एक्चुअली चलाता हूँ 3 कंपनीज सर, ठीक है? अभी नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, बट एक
1: जी
0: सोशल
1: जी
0: मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है,
1: जी
0: एक मेरा एआई का एक प्रोडक्ट है, एआई की कंपनी
1: अच्छा
0: है, और एक मेरी ट्रेडिंग एकेडमी। ये सब में मिला के अराउंड मेरे पास होंगे 15 से 20 एम्प्लॉयज, चीज़ें
1: जी
0: मैनेज करते हैं मेरे अंडर। सो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट सिर्फ हम लोग एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट दे के ही नहीं कर रहे, वी आर
1: जी
0: ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग पीपल जहाँ पे, अब जो एआई का प्रोडक्ट में अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, और सेम प्रोडक्ट यूएस का है,

0: सेम सेम इट्स लाइक ऐसे दो गैप की कंपनी आपको पता ही होगी. वैसे मेरा भी प्रोडक्ट एक यूएस का है. यूएस का जो प्रोडक्ट है दे आर चार्जिंग देम 5 to 6,000 रुपीज इंडियन यूजर्स के लिए. मेरा प्रोजेक्ट सेम है और मैं चार्ज करता हूँ 800 रुपए. सो बेसिकली इंडिया का पैसा बाहर तो गया नहीं, वो इंडिया में ही आया फिर से. ज्यादा लोग अब यूज कर पाएंगे.
1: जी जी,
0: ये भी एक सोशल हेल्प ही हो गया ना.
1: हाँ जी,
0: इतना पैसा मैं इंडिया में ही रख रहा हूँ.
1: जी जी जी, वाकई में इसके ये भी सोचने वाली बात है हिमांशु जी. वाकई में बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह रहा है, वो बहुत बड़ी बात है वाकई में. अच्छा हिमांशु जी, एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? मतलब एक आम आदमी को, एक इंसान को कैसे कैसे गुण होने चाहिए एक सफल और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनने के लिए?
0: पहला गुण एक ही है भाई, हार नहीं मानना है. अगर आप आलसी पर्सन हो, हार मान लेते हो, या फिर आप सोचते हो कि ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ, भाई अपने अंदर वो जुनून चाहिए पहले, तो वो कीड़ा लेके आओ अपने अंदर, तो ही आप कर सकते हो. एंड दूसरा, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम्स, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स. यहाँ प्रॉब्लम, ऊपर प्रॉब्लम, नीचे प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ही है, दिन सुबह से लेकर रात तक
1: प्रॉब्लम.
0: बट इन द एंड जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करके घर पे जाओगे, एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भाई आज मैं कुछ तो बेटर किया. सो पहले फर्स्ट गुण यही चाहिए अपने को कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट रखो. एंड दूसरा, अपने को कभी, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में होना, मे बी यू आर डूइंग बेटर देन समवन, बट उसको कभी नीचा नहीं दिखाना है. यू शुड बी ऑलवेज बी ग्राउंडेड, क्योंकि भगवान अगर आपको ऊपर लेके आ सकते हैं, 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको ऊपर भी आ सकते. सो यू शुड ऑलवेज बी ग्राउंडेड. तो ये दो क्वालिटीज अगर आपके पास है और मेहनत करने का जज्बा है, यू कैन डू इट.
1: जी, ये आपने बहुत अच्छी कहा है कि अगर भगवान आपको उठा सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं. जी हाँ, ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही है आपने. अच्छा तो हिमांशु जी, ये बात बताइए, जब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए तो स्मॉल एंटरप्राइजेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
0: ओके, सो बेसिकली वुमेन्स के लिए अभी तो जमाना चेंज हो गया है.
1: जी,
0: पहले जब मैं बैचेस लेता था, 10 में से 1 लड़की में देखता था. अभी के बैचेस में आई एम सीइंग 10 में से कुछ 4-5 लड़कियां भी होती है. सो दे आर कमिंग अप राइट नाउ, क्योंकि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट. आई फील कि भाई ये पूरा जमाना जितना भी चेंज हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट. वुमन आर मेकिंग मनी थ्रू द इंटरनेट, एंड पेरेंट्स भी बदल रहे हैं, उनकी वजह से जमाना भी चेंज हो रहा है. जेंजीज जो है, पेरेंट्स का माइंड सेट भी बदल रहा है. अभी वो ब्राउन माइंड सेट नहीं है उनका, दे आर ऑल्सो Living them.
1: Yes, yes, yes. वो भी मतलब मौका दे रहे हैं लड़कियों को भी और महिलाओं को भी. जी हाँ, वाकई में सच है ये बात. अच्छा तो हिमांशु जी, अब हम बात करेंगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस होती है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और वो क्या सिखाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में?
0: देखो, पहले तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि कॉलेजेस में आपको जॉब करना ही सिखाते हैं, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ नहीं सिखाते. खाली जॉब कैसे करना है आपको, एक्सेल शीट्स कैसे करना है, टैली कैसे करना है, ये सिखाते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप आपको सीखना है ना, तो आप खुद इसमें फील्ड में घुस के सीखो, एक्सपीरियंस लो. क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा. ऐसा नहीं कि देखो, स्विमिंग अपन किसी किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते. खुद जाना पड़ेगा पानी में, खुद तैरना सीखना पड़ेगा, तब जाके तैरना सही से आपको आ पाएगा. मेरे अगर करियर में बताऊं, मेरे को कोई सिखाया नहीं, मेरा कोई मेंटर था नहीं, बट मैं जो 7 बिजनेस करके जिसमें फेल हुआ था, मैं उधर से ज्यादा सीखा हूं. वो मेरे सबसे बेस्ट टीचर्स हैं.
1: वाह, मतलब आपका जो फेल्यूर का पार्ट था वो आपका टीचिंग का पार्ट था, वाकई में वो आपका लर्निंग का पार्ट था. तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात कही आपने. हमको हमारे फेल्यूर्स यानी कि हम जिन जिन में फेल हुए उनसे सीखना होता है. जी हाँ हिमांशु जी, चलते चलते आपसे 2 प्रश्न. पहला, जो व्यवसायी है मान लीजिए उसमें मुसीबतों का सामना जब करना पड़ता है तो हिम्मत टूटती है, तब क्या ऐसी चीज है तब आपको ग्राउंडेड रहने और आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं?
0: देखो, एक ही चीज है कि अगर मेरे सामने कुछ चुनौती आ जाए तो मैं झटपटाता नहीं हूँ. मेरे को इधर से निकलना है. मैं पहले उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग. आई एनालाइज कि क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू, मेरे बिजनेस में क्या कमी है, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ. आई गिव इट टाइम, क्योंकि अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है, दूसरा खोल देता है. बस टाइम लेके दूसरे दरवाजे कहाँ है वो देखना है. सो आई गिव इट टाइम, आई सेटल डाउन, आई डोंट टेक अग्रेसिव डिसीजंस. ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हुआ, फटाफट अपन दूसरा डिसीजन लेके इसको कवर करते हैं. ऐसे करोगे तो वो सबसे गंदा डिसीजन है आपका. सो गिव इट टाइम, टाइम के साथ सेटल होने, तो धीरे धीरे यू विल फिगर आउट. गिव टाइम टू योरसेल्फ.
1: मतलब आप जब हाइबत में आकर आप एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन के लिए दूसरा गलत डिसीजन, दूसरा गलत डिसीजन

0: लेती सर्कल जी ने, उसके साथ अपना पूरा पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। जी हिमांशु जी, हम करेक्ट बात बताइए आपने। अच्छा हिमांशु जी, आखिरी सवाल, भारत में जो स्टार्टअप का और लघु उद्योगी का जो भविष्य है, उनमें हमारी युवा वर्ग का जो मतलब उनके लिए आने वाले फ्यूचर कैसा देखते हैं, मतलब उनके लिए कैसा है फ्यूचर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए?
1: देखो अभी तो आई एम वेरी बुलिश इन इंडियन
0: जी
1: स्टार्टअप्स बिकॉज
0: ट्रेडर
1: इट विल
0: जी
1: बी गोइंग क्रेजी. मतलब वो फटने वाले हैं अभी थोड़े टाइम में बिकॉज
0: जी
1: ब्लास्टअप.
0: जी जी जी
1: सो वो बस फटने वाले थोड़े टाइम में बिकॉज अभी इंटरनेट भी आ गया है, बहुत
0: हाँ
1: सारी
0: जी
1: अपॉर्चुनिटीज भी खुल गई है.
0: जी
1: ए आई जो आया है ना,
0: हाँ
1: इसकी
0: जी
1: वजह से अब हर चीज रिप्लेस होने वाली है. एआई
0: जी
1: में जो भी
0: जी
1: स्टार्टअप
0: जी
1: एआई में रहेगा ना, वो
0: हाँ जी
1: मिलियन डॉलर क्रॉस कर लेगा विदिन अ मंथ ऐसा है.
0: फॉर
1: सो
0: श्योर।
1: दिस इज व्हाट आई बिलीव.
0: ओके ओके, तो जी हाँ हिमांशु जी, तो एआई और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये तो वाकई में हम ये सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए तो एक वरदान जैसे हैं आजकल जो नए शुरुआत जो लोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे हिमांशु जी, और ये थे एक ये बता रहे हैं हमें कि एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, उनके कैसे कैसे गुण होने चाहिए, और उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उनको चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि किसी तरह से आप छोटा मोटा कुछ भी काम कर लीजिए, डिलीवरीज कीजिए या नहीं तो कोई भी छोटा मोटा जॉब कीजिए, और अपना कैपिटल जमा कीजिए। कैपिटल जमा करने के बाद आप कहीं पर भी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके, आप रिसर्च करके, आप एक छोटा सा कोई भी इंडस्ट्री या नहीं तो कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के तौर पे। एंड उसके बाद आप इसको, जो भी चुनौतियाँ आती है उसको शांति से, ना कि हम हैबत में आके, या नहीं तो कुछ भी गलत हो रहा है तो हम इसको जल्दबाजी में एक डिसीजन के लिए दूसरा गलत डिसीजन नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर भी हम सोचना है। और रही बात महिलाओं का, तो महिलाएं और औरतें और लड़कियाँ भी अभी आजकल बहुत ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, पेरेंट्स का भी माइंडसेट डेवलप हो रहा है। जैसे कि हिमांशु जी ने बोला है कि एआई का ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो जी हाँ इंटरनेट हमारे लिए वरदान के जैसा है। और इन्होंने ये भी बोला है कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम अगर दिन भर बस रील स्क्रोल करते रहेंगे तो फिर वहाँ तो फिर बस टाइम वेस्ट होगा अपना। तो जी हाँ, तो दोस्तों ये थे हिमांशु परवाल जी, और हमने सुना इनको। बहुत शुक्रिया आपका हमारे हमारे साथ बने रहने के लिए। और दोस्तों चलिए सुनते हैं एक छोटा सा गीत।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। समय हो रहा है 12:12 और 1, 2, 3, 12 सेकंड भी। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में वापस। तो दोस्तों, हम पहले मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो मॉनसून स्टार्ट होने हो गया है ऑलरेडी, और ऐसी कौन सी जगह है, मैं आपको टॉप 10 जगह बताऊंगा जहां पर आपको मस्ट विजिट करना है, या नहीं तो आप जा सकते हैं इस मॉनसून में। तो जी हाँ, लिस्ट में पहला नंबर पे आता है मुन्नार, केरला में, यहाँ के टी गार्डन्स, और जो पूरे रास्ते पूरे मिस्ट के साथ कवर्ड रहती है, और यहाँ पर वाटरफॉल्स, और इतना ठंडा मौसम रहता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप इतना मतलब प्रकृति के साथ आप बस घुल मिल सकते हो वहाँ पर। वहाँ की टी गार्डन्स इतनी खूबसूरत होती है कि मैं तो नहीं गया, लेकिन हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं, एंड मैं बहुत जल्द यहाँ पर बाइक पे जाने का प्लान ज़रूर बनाऊंगा। और उसके साथ आता है दूसरे नंबर पे, वो है कोर्ग, जो कर्नाटक में ही है, जहाँ की कॉफ़ी प्लांटेशंस। कॉफ़ी तो भाई मेरा इंक है, मेरे लगता है कि मेरे नसों में ना खून नहीं कॉफ़ी दौड़ता है, क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पीता हूँ मैं। तो कॉफ़ी जो है ना, इंसान के मेटाबॉलिज्म को बहुत ही शार्प बनाता है। ओवर कैफीन भी होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो इसीलिए लिमिटेड में पीना है। यहाँ के कॉफ़ी प्लांटेशंस इतने खूबसूरत होते हैं, एंड यहाँ की ग्रीनरी, एंड यहाँ की सीनिक ड्राइव्स, मतलब सीनरीज इतने खूबसूरत होते हैं यार कोर के, क्योंकि आप पहाड़ी के इलाके में रहते हो, एकदम से धुंध रहता है बहुत, और ठंड का मौसम रहता है, बारिश भी कभी कभी होते रहती है अक्सर वहाँ पर। और तीसरे नंबर पे आता है मेरा फेवरेट लोनावला। जी हाँ, मैं गया हूँ वहाँ पर, लोनावला इतना खूबसूरत जगह है, मतलब इतना मतलब खुशी मिलती है वहाँ पर जाने के बाद, पता नहीं क्यों, बस अजीब सा खुशी मिलती है वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि इतना सुकून, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े वैलीज़ होते हैं वहाँ पर, और मॉनसून के सीज़न पे जब जाओगे आप वहाँ का ट्रेकिंग, इतना फॉगी व्यू रहता है, वाटरफॉल्स होती है, जो महाराष्ट्र में है लोनावला, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी आने वाला है चौथे नंबर पे, जो कि मैं तो कहता हूँ भाई इसको तो आप वर्ल्ड वर्ल्ड के नंबर्स में डाल दो इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन एकदम इंटरनेशनल वाली खूबसूरती, चिरुपुंजी, जो कि है मेघालय में। मैं यहाँ पर गया था

पिछले साल, और द व्यू वॉज जस्ट स्पेक्टेकुलर. इट वॉज जस्ट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस वेर आई हैव गॉट ओवर देयर. सच अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स, वहाँ पे लिविंग रूट ब्रिजेस है. जी हाँ, जहाँ पर अभी यहाँ के ब्रिजेस जो होते हैं, यहाँ के जो ब्रिज जो हम सीमेंट से बनाते हैं ब्रिज को, वहाँ का एक मतलब कुछ ब्रिज है जो लिविंग रूट से बना हुआ है. मतलब पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना, उनसे बना हुआ ब्रिज है वहाँ पर. एक नहीं, दो नहीं, कई ब्रिज है वहाँ पर. मैं जब गया था वहाँ पर, डबल डेकर ब्रिज, सिंगल डेकर ब्रिज, और उसके आगे अगर आप ट्रैकिंग करोगे तो ब्लू लगून करके एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स आता है, जहाँ पर पूरा पानी ब्लू रहता है, जहाँ पर आपको अंदर तैरने का मौका भी मिलता है लाइफ जैकेट्स के साथ. जी हाँ, बंदोबस्त वहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है. एंड इतना खूबसूरत जगह है, इतना खूबसूरत जगह है, मानो कि आपको लगता ही नहीं कि आप धरती पर, एकदम स्वर्ग पर पहुँच गए हो. जी यार, लेकिन असली में नहीं, लेकिन वो स्वर्ग की अनुभूति ज़रूर आती है. मुझे तो वैसे ही लगा भाई, मैं गया हूँ वहाँ पर, और ब्लू लगून जो वाटरफॉल है बहुत ही खूबसूरत है. आप अगर चाहे तो एक बार गूगल करके देख लीजिए ब्लू लगून लेक करके, और वहाँ के नज़ारे आप एक बार देखिए, आप खुद ब खुद प्लान बना लोगे और चले जाओगे वहाँ पर, इतना खूबसूरत होता है. और अभी पांचवे नंबर पे आता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ये एक उत्तराखंड में, जो कि फ्लावर्स वहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लूम करते हैं ये फ्लावर्स, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, और वो जुलाई से ही स्टार्ट होता है. और वहाँ का भी मौसम ठंडा सा और सुकून भरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है. एंड मैंने देखे हैं वहाँ पर इतने, मतलब हाँ, मैं जा चुका हूँ, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत हैं वहाँ पर उत्तराखंड में, मंदिर वंदिर वगैरह और रिवर्स वगैरह बहुत हैं वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत एहसास मिलता है. तो दोस्तों, बाकी के जो पाँच है वो भी एकदम आउटस्टैंडिंग जगह है, जो कि मैं बताऊंगा आपको एक छोटे से गाने के बाद.

0: FM Rainbow 101.9
1: वेलकम। तो दोस्तों वेलकम बैक। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे टूरिस्ट प्लेसेस की जहाँ पर आप इस मॉनसून में जा सकते हैं और जाना चाहिए अगर आपके पास वक्त हो तो, और जी हाँ जेब में पैसा हो तो भी। अपना सेविंग जमा किया हुआ है ना, कितना कितना बोल के आप अभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते रहेंगे। थोड़ा सा आप लीव लीजिए एक हफ्ते की और जाइए कहीं पर और अपना दिमाग को शांत करके वापस आइए, ताकि फिर से उसी झमेले में आप वापस जा सको फ्रेश और एकदम रिबूट करके खुद को। जी हाँ, रिबूट यानी कि रिफ्रेश, यानी कि रीसेट। अपने अपने दिमाग को रीसेट करना हो या नहीं तो अपने मूड को रिफ्रेश करना हो, नेचर से बेहतर क्या हो सकता है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं अशोक जी, यहाँ पर मैसेज करते हैं, आँखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, हर सुबह लाए आपके लिए इतनी खुशियाँ जिसका कभी शाम ना हो। वाह वाह वाह, बहुत ही शुक्रिया अशोक जी, बहुत ही शुक्रिया। तो दोस्तों हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के साथ, जो कि लिस्ट है ट्रैवल एंड टूर का। जी हाँ, तो छठे नंबर पे आता है, सिक्स्थ प्लेस पे आता है, गेस करिए, मतलब एकदम एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये तो। जी लद्दाख। जी हाँ, ले और लद्दाख, ये तो हर युवा, हर यूथ और हर वो है, उनका ड्रीम है जो अभी अभी 18 प्लस हुआ है कि उनको बाइक पे लद्दाख घूमने जाना है। भाई साहब क्या फील आता है। जी हाँ, मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी ले एंड लद्दाख को, और बहुत ही खूबसूरत, मैं वहाँ पर खारदुंगला पास को गया था, जो कि वो भी एक काइंड ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पीक के नाम पे है, वन ऑफ द, और इतनी खूबसूरत, वहाँ का सीज़न इतना खूबसूरत, वहाँ का मौसम इतना खूबसूरत, और वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, ले के जो लोग हैं बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर हर घर के सामने आपको एक सेब का पेड़ नज़र आएगा और एप्रिकॉट्स के पेड़ नज़र आएंगे, और आप सीधा जाके उनको पूछिए कि क्या मैं ले सकता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि ले जाओ, ले थैली भर के ले जाओ। और हम मतलब वो सेब इतने इतने टेस्टी होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, कि मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं वहाँ पर जब गया और मैं वहाँ पर अपने लिए अकोमोडेशन के लिए जब देख रहा था,

हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक होटल में, हर एक लॉज में, हर एक घर में सेब का पेड़ ज़रूर लगा होता है। और मैंने वहाँ जब मतलब लॉज, मेरा जो होटल में मैंने रुका था हिल टॉप करके, वहाँ पर मैंने उनको पूछा कि क्या मैं ले सकता हूँ, कोई कोई पाबंदी तो नहीं? तो बोले कि ऐसे ऐसे पूछने वाली थोड़ी बात है, ये सब आप ही के लिए तो रखा है। और वो हमें खुशी खुशी जितने चाहे उतने सेब तोड़ने दिए, एप्पल्स, और इतने मीठे एप्पल्स थे, इतने मीठे एप्पल्स थे। और जो मैं 25 साल से जो एप्पल्स खा रहा था, मुझे मुझे मुझे लगता था वही एप्पल हैं। लेकिन जब मैं लद्दाख को गया ना, सुन रहे हो दोस्तों, जब मैं लद्दाख को गया था, वो था असली एप्पल का टेस्ट, जो कि बिना किसी केमिकल्स, बिना किसी वैक्स और बिना किसी मेडिसिन्स और बिना किसी फर्टिलाइजर्स से बना हुआ प्योर और नेचुरल और फ्रेश एप्पल्स। बहुत ही लाजवाब थे। एंड साथ ही थे एप्रिकॉट्स, ड्राइड नहीं, एकदम ताज़े एप्रिकॉट्स, और इतने टेस्टी थे वो एप्रिकॉट्स, मैं तो भर भर के लाया। लेकिन अफसोस की बात है, आप एयरपोर्ट में रोक लिया कि इतने भर के कहाँ लेके जा रहे है तू, और उन लोगों ने थोड़े वहीं पे उतरवा दिए। खैर, वो तो अफसोस की बात है। तो लेह और लद्दाख और वहाँ का बाइक ट्रिप्स, भाई साहब अभी ये बहुत ही प्रॉपर मौसम है, एग्जैक्ट मौसम है, परफेक्ट मौसम है बाइक ट्रिप्स के लिए, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा स्नो या नहीं तो ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, बारिश और ज़्यादा गर्मी कुछ नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट क्लाइमेट रहता है, एकदम ठंड और एकदम पीसफुल क्लाइमेट रहता है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपको वहाँ पर जाने के लिए। तो देखिए, अगर हो सके तो बाइक्स यहाँ से आप लेकर जा सकते हो, या नहीं तो फिर वहाँ पर भी रेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जब गया था मैंने वहीं पे रेंट किया, और वहीं से मैंने पूरा राउंड ट्रिप मारा, और वहीं पे मैंने वापस गाड़ी देके फिर फ्लाइट से वापस आ गया। जी हाँ, ऐसा भी ट्रिप कर सकते हैं। और दूसरा यानी कि अगले, सॉरी, आगे जो लिस्ट में आता है 7वें नंबर पे, स्पीति वैली। जी हाँ, आपने शायद आजकल बहुत ज़्यादा इसके इसके बारे में चर्चे सुने होंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में। जी हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फेमस हो रहा है स्पीति वैली। वहाँ का जो टूर होता है, वहाँ का जो ट्रिप होता है, और वहाँ का जो बर्फबारी होता है, हालांकि अभी नहीं मिलेगा बर्फ, लेकिन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स होती है, मोनेस्ट्रीज होती है, एंड स्टनिंग माउंटेन व्यूज़ होती है, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, और बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही खूबसूरत मतलब मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती है एंड टेम्पल्स होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं, एकदम रिफ्रेशिंग एंड रीबूट जैसे होता है अपना। तो जी, और उसके बाद आता है शिलोंग, मेघालय। यहाँ पर भी आप इस मॉनसून यानी तो कभी भी मॉनसून के टाइम पे मेघालय जा सकते हैं। एंड मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ मॉनसून में ही जाइए मेघालय, क्योंकि वहाँ के जो वाटरफॉल्स होती है, भाई साहब इसका तो कोई जवाब ही नहीं, इतने खूबसूरत जगह होता है। उसमें ट्रेकिंग होता है आपको, और बहुत सारा चलना होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं, एंड रास्ते में उस जगह का स्पेशल खाना, उस जगह का जो मतलब रिलेटेड खाना होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, वो मिलता है, बहुत ही टेस्टी होता है, एंड बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, एंड वाटरफॉल्स कंपलसरी, मस्ट एंड गो यार। मेघालय का मैंने इससे पहले भी चिरपुंजी का बोला था, जहाँ पर वाटरफॉल्स और रूट ब्रिजेस हैं, और यहाँ पर ये शिलोंग है। यहाँ पर आपको ना एकदम से पहाड़ियों पे, जहाँ पर आपको लगता है कि बादल को आप टच कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं वहाँ पर मेघालय में। और इसका नाम भी तो देखो, मेघालय यानी कि मेघ का आल है, यानी कि एक क्लाउड्स का जो है ना भवन, यानी कि क्लाउड्स का टेम्पल, मेघालय। तो जी, अगला नंबर पर आता है 9वें नंबर पे अरक्कू वैली। जी हाँ, जो हैदराबाद में है उनके लिए तो भाई ये तो एकदम मस्त पिकनिक स्पॉट है, और बहुत ही इजी स्पॉट है, यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये है सिर्फ बगल वाले स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, अरक्कू वैली। और यहाँ का कॉफ़ी एस्टेट्स, भाई सब कॉफ़ी, मैं जब भी ऐसे ऐसे जगह पे जाता हूँ तो ना मैं कंपलसरी 1-1 किलो या 2-2 किलो कॉफ़ी के बीन्स और कॉफ़ी का पाउडर उठा लाता हूँ, ताकि मैं उसको पूरे साल भर चला सकूँ और मैं अपने दोस्तों को भी बांटूँ, हाँ थोड़े से पैसे लेके। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलेंगे वाटरफॉल्स, केव्स, और बहुत ही अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ मिलेंगे।
तो अरकू वैली बहुत

बहुत ही ग्रीन होता है, बहुत वैली यानी कि पहाड़ियाँ, दो पहाड़ों के बीच में से जब रास्ता निकलता है वो वैली हो जाता है, और इतनी खूबसूरत वैलीज होते हैं। ठीक ठीक है, आपको ये बोल सकते हैं ये मिनी मेघालय है क्योंकि मेघालय में भी तो आपको वैलीज ही नज़र आएंगी, पूरे दूर दूर तक वैलीज ही नज़र आएंगी। आपको जाना होता है, बाइक्स पे भी जाना होता है तो वैलीज़ के बीचों बीच और वैलीज़ के ऊपर, वैलीज़ के नीचे में से ही जाना पड़ता है। आपको वाटरफॉल्स को भी देखना पड़ता है तो वहीं से जाना पड़ता है। तो ये अरक्कू जो हो गया है ना, तो ये आपको मिनी मेघालय समझ लीजिए। अब जो हैदराबाद में जो लोग रहते हैं, जो तेलंगाना में लोग रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान का ट्रिप है ये। मैं चाहता हूँ कि आप इस मॉनसून को वहाँ पर जाइए और अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, और अगला नंबर पर, जो 10th नंबर, टॉप 10 के आखिरी नंबर, कुछ लोगों का यह पहला नंबर होता है, तो आखिरी नंबर पे है मेरा, मतलब लिस्ट है ये वैसे तो, ऐसा नहीं कि रैंकिंग के हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया, लिस्ट के आखिरी नंबर पे है सबका फेवरेट, सबका सबका सब सभी लड़कों का फेवरेट मेरा मतलब। जी आपने तो शायद गेस कर भी लिया होगा, गोवा। जी हाँ गोवा। तो ये अच्छा मौसम है, ये अच्छा मंथ है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि आप अगर समर में जाओगे ना तो भाई साहब बहुत बहुत बहुत वाट लग जाएगी, बहुत गर्मी होता है वहाँ पर। अगर बिना चप्पल के अगर आप रेती में चलोगे ना तो नहीं बचेंगे आपके पैर, पिघल जाएंगे, इतना ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर जब आप, गर्मी का सीज़न होता है, और वहाँ पर बारिश का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक वहीं से आसपास में ही एक जगह है अम्बोली करके, जहाँ मैं गया था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन हाँ अम्बोली करके जगह है जो गोवा के आसपास में है, जो वहाँ से शायद कुछ 100 किलोमीटर के अंदर ही होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, एकदम बहुत ही खूबसूरत, इतना आपको वुड्स में जाना रहता है, मतलब फॉरेस्ट में ट्रेकिंग रहता है, वहाँ के जो घर रहते हैं, वहाँ पे जो होटल्स रहते हैं बहुत खूबसूरत रहता है, एंड वहाँ के लोग भी, टूरिस्ट एकदम इंटरनेशनल से आते हैं, फॉरेन से आते हैं यहाँ पर समय बिताने के लिए। जी हाँ, अभी गोवा तो वैसे 365 डेज चालू होता है और लोग उसको जाना भी पसंद करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा ऐशो आराम जो कर सकते हैं आप, और ख़ास करके लड़के और कपल्स, इनका तो मस्त पार्टी टाइम है गोवा। तो जी हाँ, तो ये थे टॉप 10, मतलब यानी कि टॉप 10 यानी कि रैंकिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन लिस्ट, टॉप 10 लिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस जो आप मॉनसून में जा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जाइए, एंड अगर आपको मौका मिले वंस इन ए लाइफ टाइम, जो मैं आपको टॉप 3 दे देता हूँ वो है मेघालय, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये 3 जगह ज़रूर वंस इन ए लाइफ टाइम कंपलसरी, कभी ना कभी किसी तरह से कैसे भी करके अपने दोस्तों को बोलिए, अपने परिवार के साथ जाइए, अपने कलीग्स के साथ जाइए, मनाइए, लेकिन बस ज़रूर वहाँ पर जाइएगा, और वहाँ की खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पल, वो सब आप कैद करके आइएगा, और इतना अच्छा आपका रिफ्रेशिंग हो जाता है, इतना अच्छा रिबूट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं बीच में गाने नहीं लगाए तो शायद आप बोर हो रहे होंगे, कोई बात नहीं यार, ठीक है, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, गाने लगा दूंगा अभी, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत नहीं एकदम ब्लास्टिंग वाला गाना, मस्त गाना, वो है मारिया, रिकी मार्टिन का,

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। दोस्तों, वो मैं सोच रहा था आज मैं कुछ एक नया करूं। जी हाँ, मैं आप सबके लिए एक नई चीज़ कोशिश करने की सोच रहा हूं। और

जा रहा हूँ, और कृपया करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जी मैं बताऊँगा क्या करने वाला हूँ। मैं सोच रहा था मैं एक कहानी सुनाऊँ। जी हाँ, एक कहानी। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को मॉनसून की ही कहानी क्यों ना सुनाया जाए। मैं लास्ट में बताऊँगा कि इसके कैरेक्टर्स कौन हैं और इसको किस किसने लिखा। कहानी का नाम है एक छतरी दो दिल। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं हर प्यार की शुरुआत आई लव यू से ही नहीं होता, बस कभी ना नज़र से ही होती है। तो दोस्तों एक टाइम की बात थी, रोज़ सुबह ठीक 8:30 बजे एक पुराना बस स्टॉप, उस बस स्टॉप के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान और उस दुकान के बाहर एक पुराना रेडियो, और सुबह चाय वाला बस आने से पहले रेडियो चालू करता है और एक ही धुन बजती है। उसी धुन के साथ एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। 2 मिनट बाद एक लड़की खड़ी हो जाती है। दोनों एक ही बस का इंतजार करते हैं। कभी नजरें मिलती तो कभी दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर जैसे दोनों को याद आ जाता हो कि कुछ कहना मना है। ये सिलसिला एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 2 साल तक चलता रहा। लड़का हर रोज सोचता कल बात करूंगा, कल बात करूंगा, कल बात करूंगा, और शायद लड़की भी दिल ही दिल में कहती होगी आज शायद वो कुछ कहेगा, आज शायद वो कुछ कहेगा। वो ही कहेगा, मैं कैसे कहूँगी। तो लेकिन कल कभी आज नहीं बना। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, किसी को रोज देखना हो पर कभी हिम्मत ही ना हो उनसे बात करने की। चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

0: हमेशा सोचता था कि मैं कल बात करूँगा, कल बात करूँगा, कल बात करूँगा, और वो लड़की सोचती रही आज बात करेगा, आज बात करेगा, आज बात करेगा। हमेशा ऐसे ही होता है। उस बीच क्या हुआ, एक बार बारिश होने लगी, सावन की पहली बारिश थी, और लड़के के पास छाता नहीं था। लड़की के पास छाता था पीला छतरी, और लड़की चुपचाप बाजू में आई और अपना छतरी के अंदर उसको रहने दिया। लड़का कुछ नहीं बोला, लड़की भी कुछ नहीं बोली, और जैसे ही बस आ गया था वो अंदर चढ़ गए। लेकिन इनके पास मौका था, लेकिन इन्होंने कभी इसको यूटिलाइज नहीं किया। तो दोस्तों क्या है ना कि जब आपको मौका मिलता है आपको उसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कब कैसे क्या होता है किसी को नहीं पता। तो लड़का हिम्मत जुटाकर एक चिट्ठी लिखकर आता है अगले दिन। उसको शायद थैंक यू बोलना था छाता देने के लिए, या नहीं तो फिर कुछ और बोलना था, पता नहीं। उसने चिट्ठी लिखा और उस दिन वो सेम टाइम पर वहाँ पर आया। उसने इंतज़ार किया, इस बार थोड़ा सा देर हो गया था, लड़की आई नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, लड़की अभी तक नहीं आई। 15 मिनट हो गए, बस आ गया। उसको लगा कि शायद उसको और इंतज़ार करना चाहिए, उसने बस जाने दिया। और इंतज़ार किया आधा घंटा, 1 घंटा, लड़की आई नहीं। तो फिर लड़का मायूस होकर चला गया। अगले दिन फिर आया, उसने फिर इंतज़ार किया, लड़की आई नहीं। तीसरा दिन, अगला हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे करते करते वो बस इंतज़ार करता रहा, लेकिन लड़की आई नहीं। उस बीच में कंडक्टर वाले भैया ने उसको बताया कि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो इस शहर से जा चुकी है। तो दोस्तों ये एहसास जब होता है कि हमने शायद लेट कर दिया हो, इतना इतना दुख भरा एहसास होता है, इतना दुख भरा एहसास होता है, क्या करें कि एक एक रिग्रेट होता है कि काश मैं उस दिन हिम्मत जुटा लेता तो आज ये मैं रिग्रेट नहीं होता मेरे साथ। आगे क्या हुआ मैं आपको सुनाऊंगा एक और छोटी म्यूजिक के बाद। उससे पहले सुनिएगा एक संदेश।
1: ఎల్ఐసి యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్. కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైం రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాత్.
2: ఇరానీ చాయ్,
3: బన్ మస్కా,
2: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
3: టంగ్ ది కబాబ్,
2: కుర్బానీ కా మీఠా,
3: షహదూద్ మలై,
2: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే.
3: And every dish has a story waiting to be told.
2: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
3: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
2: It's not just food.
3: It's culture, history and flavor rolled into one.
4: Jashne Hyderabad.

अजनबी तू भी कभी, ये गाना था उदित नारायण का, खूबसूरत सा नगमा। और जी हाँ दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी के साथ, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं रोज़, लेकिन कभी बात नहीं करते। 2 साल बीत गए, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, लेकिन उस डायरी के बीच रखी। जी हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि वो लड़का,

कुछ तो बता जिंदगी। जी हाँ, वो लड़के का भी कुछ ऐसे ही हाल था। कुछ तो बता जिंदगी, क्योंकि उसके पास कभी उसको अलविदा नहीं मिला, तो इसी बात का उसको अफसोस था। लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे आने वाला है आपका फेवरेट सेगमेंट हेलो रेनबो का, जिसमें आप हमसे रूबरू बात कर सकती हैं और हम आपको शेयर करेंगे एक टॉपिक और नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको मैं ये स्टोरी ख़त्म कर दूँ। बहुत ही खूबसूरत है। 2 साल बीत गई, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन उस डायरी के बीच में जो रखा हुआ वो चिट्ठी कभी पुरानी नहीं हुई। हर मानसून यानी कि हर बारिश के टाइम पे या हर सावन में उसे वो एक बार ज़रूर पढ़ता, जैसे बारिश उसे उस बस स्टॉप की याद दिला देती हो। फिर एक दिन मानसून की पहली बारिश थी, यानी कि सावन की पहली बरसात थी। एक पुराना बुक स्टोर के बाहर वो बारिश के कारण रुक गया और इंतज़ार कर रहा बारिश रुकने का। तभी कहीं पास से एक पुराना रेडियो पर वही धुन बजने लगा जो कभी उस चाय वाले की दुकान से रोज़ सुना करता था। उसका दिल एक पल के लिए तहर सा गया और तभी पीछे से एक

किसी आवाज आई, एक्सक्यूज मी। जी हाँ, कौन था वो? क्या सच में किस्मत इतनी सालों बाद भी दोनों को दोबारा मिलने का मौका दे? या नहीं तो फिर ये इत्तेफाक हो या वहम? इसका जवाब मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्योंकि गाना बजाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, वरना तो एक और गाना बजा के आपको सस्पेंस में रख के मैं बताता। लेकिन कोई बात नहीं, आगे। एक्सक्यूज मी, उसने धीरे से मुड़कर देखा और जैसे वक्त ठहर गया, वही आंखें, वही मुस्कुराहट और हाथ में वही पीली छतरी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरियां सिर्फ एक नजर में सीमित हो गई। सबसे पहले लड़की ही बोली, आखिर वे लड़की ही बोली, जो सोचती रही कि वो कल बोलेगा, वो कल बात करेगा, वो कल आकर बात करेगा। आखिरकार पहली बार लड़की ही बात की। तुम अब भी बारिश में बिना छतरी के ही निकलते हो? लड़का हल्के से हंसी के साथ बोला, शायद आदत नहीं बदली। लड़की मुस्कुराई और कही, और शायद कुछ इंतजार भी। दोनों के बीच फिर वही खामोशी आ गई, लेकिन इस बार वो बोझ नहीं थी, वो सुकून थी। थोड़ी देर बाद लड़के ने धीरे से पूछा, उस दिन तुम आए क्यों नहीं? लड़की ने मुस्कुराते हुए हल्के से थम गई, पापा का ट्रांसफर हो गया था, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को अलविदा कहने का वक्त ही नहीं मिला। लड़का बस चुप रहा। फिर उसने अपने पुराने वैलेट खोला, उसमें से एक मुरझाया हुआ कागज़ निकाला। मैं ये तुम्हें देना चाहता था। लड़की ने कागज़ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी, ये लेटर मैंने उसी दिन देख लिया था। उस दिन जब तुम मुझे वो लेटर देने वाले थे, मैंने देख लिया था, बस उसे पढ़ने का मौका किस्मत ने बहुत देर से दिया। उस कागज पर लिखा था, शायद हम दोनों रोज एक ही बस का नहीं, एक ही मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। भाई, इसने लड़के ने कितने इनडायरेक्टली कुछ इजहार किया इन्होंने। और लड़की ने अपने बैग से एक पुराना कागज निकाला और लड़के को दिया और बोला, मुझे भी ये तुम्हें देना था। लड़का बोला, सच? क्या है उसमें? दिखाओ तो। एक गहरी सांस लिया उसने और उस पर लिखा था, मैं भी रोज सोचती थी कल तुम बात करोगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो उदासी के नहीं, सुकून के थे। बारिश वैसे ही हो रही थी, बस इस बार खामोशी नहीं थी, सिर्फ बातें थीं और एक पीली छतरी जो बारिश से कम दो अधूरे दिलों को ज्यादा बचा रही थी। दोस्तों, उसके बाद की कहानी आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पर लड़के ने तो इनडायरेक्टली इजहार भी कर दिया और मुझे लगता है कि लड़की भी इनडायरेक्टली उसने हाँ भी कर दिया। तो जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ कुछ पल के लिए ही मिलते हैं और कुछ लोग देर से मिलकर हमेशा के लिए अपना हो जाते हैं। इसीलिए अगर दिल में कोई बात हो, उसे कल पर मत छोड़िएगा, क्योंकि हर कहानी को दूसरा मौका नहीं मिलता जनाब, हर किसी को दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन जब मिलता है, तो वो बारिश की पहली बूंद की तरह, सावन की पहली बरसात की तरह जिंदगी भर याद रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी और उस लड़के का नाम था जय, जयदीप, यानी कि JD मैं, और इस कहानी को लिखा था मैंने। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा आप व्हाट्सएप के ज़रिए कैसी लगी आपको कहानी। और वैसे अभी चालू हो गया है, टाइम हुआ है 1:04 और चालू हुआ है हेलो रेमबो का सेगमेंट। तो मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक मैं चाहता हूं कि बहुत ही सिंपल रहे यार, क्योंकि बहुत हो चुका है सवाल जवाब सवाल जवाब। मैं चाहता हूं कि आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल रहे। आज का टॉपिक है, आपको
कौन

सी मूवी बहुत बहुत सबसे एकदम फर्स्ट नंबर पे आप रखते हैं, फर्स्ट रैंक देते हैं आपकी सबसे फेवरेट मूवी और सबसे फेवरेट गाना? तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी वो फेवरेट मूवी है और कौन सा वो फेवरेट गाना है। और आपके फोन लाइंस है 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715। मैं एक और बार सारे नंबर्स आपको मैं दोहरा देता हूँ। पहला नंबर है 0402323-0030, 0402323-4821 और तीसरा नंबर है 0402970-4715। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर यदि आप बिजी हैं या नहीं तो किसी कारण आपका कॉल नहीं लग रहा हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टेंट व्हाट्सएप के थ्रू, और वो नंबर है 4023234822। मैं एक और बार दोहरा देता हूँ, 4023234822।

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: तो दोस्तों, जारी हो चुका है कॉलिंग सेगमेंट और कॉल्स भी आने लगे हैं. तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है. हेलो रेनबो.
2: राधे राधे. सुखचैन से रहना है, सेहतमंद रहना है तो राधे राधे कहना है.
1: राधे राधे सर. सर आपका नाम?
2: मुरली.
1: मुरली जी, राधे राधे. आप कैसे हैं?
2: एकदम फर्स्ट क्लास है. जयदीप जी, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मुरली जी.
2: वैसा ही रही है और भी बढ़िया रही है
1: जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मुरली जी, क्या आपने आज का टॉपिक सुना है? मैंने आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल रखा है.
2: सिंपल रखा है मगर बहुत ही तकलीफ भी दे रहे हैं आप. क्यों बोला तो?
1: कारण?
2: अगर एक एक मूवी कैसा बता सके जयदीप जी, आप बोलिए. अगर मुकंदर का सिकंदर पकड़े तो लावारिस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमक हलाल क्या हो जाएगा.
1: जी जी,
2: ये छोड़ दीजिए. डर क्या होता है, दिल तो पागल क्या,
1: अरे
2: तो पागल
1: रे,
2: क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए किधर हो जाएगा.
1: जी जी, इसीलिए तो ना आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है. जी हाँ, बहुत. ये तो वाकई में आपने सच कहा है, लेकिन यही तो मजा है इस इन सब में भी से आप चुनकर. इसलिए मैंने बोला आपको फर्स्ट रैंक को किसको दे सकते हैं आप. बहुत ही मुश्किल है.
2: रैंक तो नहीं दे सकता हूँ. हर फिल्म फर्स्ट रैंक में रहेगा
1: जी.
2: मगर ये सॉन्ग जो डाले आप, ए जिन भी तू
1: जी,
2: भी
1: जी,
2: कभी
1: जी.
2: आवाज दे कहीं से.
1: हाँ जी.
2: अरे क्या सॉन्ग है वो तो. मगर ऐसा सॉन्ग तो बहुत कुछ है. हर एक पिक्चर को मैं तो फर्स्ट रैंक में देता हूँ. मैं क्यों बोला तो, हर एक राइटर वैसा है, हर एक डायरेक्टर वैसा है, हर एक एक्टर वैसा है, हर एक एक्ट्रेस भी वैसा है
1: जी.
2: वैसा ही एक्ट्रेस सुंदर भी है.
1: हाँ जी, वो भी बात सही है.
2: और इस सुंदर में तो आपका कहानी और भी सुंदर है.
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुरली जी, आपने पूरा कहानी सुना.
2: सुना मैं, बहुत ही पसंद आया.
1: बहुत शुक्रिया.
2: देर तो नहीं करना चाहिए, ये तो समझ चुका हूँ.
1: जी हाँ, देर नहीं करना चाहिए.
2: देर नहीं करना चाहिए बस. और हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू वेरी मच.
1: मुरली जी, एक गाना तो बता दीजिए आपका फेवरेट. इतने सारे तो बता दिए. चलो, हम मानते हैं, हमारे लोगों को भी तो पता चले कि कितने तकलीफ लोग ले रहे हैं इस सवाल का जवाब लेने के लिए.
2: दिलवाला दुल्हनिया में से ना जाने कहां खो गया दिल.
1: अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गाना है. बहुत थैंक यू सो मच मुरली जी आपका.
2: हैव अ ग्रेट डे.
1: थैंक यू, थैंक यू. तो जी हाँ दोस्तों, लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. हाँ, एक हिसाब से ये सच है. चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, अगला कॉलर कौन है.

0: है। हेलो रेनबो,
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून।
1: बहुत अच्छा सुना है आप। अच्छा पेश करे, हमारे घर में लाइट बंद हो गई थी 10 बजे से पहले, तो
0: अरे रे रे रे,
1: अब सुनी मैं 12 बजे से आपका प्रोग्राम। बहुत
0: जी, आप
1: अच्छा कर रहे हैं आप,
0: बहुत
1: विशेष है आपको।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और
0: आपका
1: है
0: नाम मैडम?
1: तो मेरा नाम महजबीन है, सोशल
0: महजबीन
1: वर्कर टीटर
0: जी,
1: बंडे से।
0: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप?
1: वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ मैं।
0: जी जी
1: हर
0: जी
1: कोई पसंद करते मेरे को, कहीं को बोल तो हर किसी के उसमें जाती हूँ मैं, अच्छे में
0: नहीं, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है
1: सोशल वर्क करती ना। छोटे
0: जी।
1: छोटे बातों से लेके बड़े बड़े कामों तक अल्लाह करा देता मेरे हाथ।
0: जी, ऊपर वाला ही सब कराता है, वो बात सच
1: और
0: है।
1: किक फिल्म है, मन फिल्म है, और
0: मन,
1: मन फिल्म
0: जी
1: आमिर
0: जी
1: खान का,
0: हाँ
1: और
0: जी, हाँ
1: किक
0: जी
1: किक फिल्म है, और है
0: जी
1: तो क्या बोलते सो थोड़ी हमारी अधूरी कहानी, हम आपके हैं कौन,
0: जी
1: हमें
0: जी
1: प्यार किया बस एक दूसरे के लिए
0: हाँ जी,
1: बस।
0: हाँ जी,
1: अच्छे
0: बहुत
1: से
0: ही अच्छा कलेक्शन है आपका रैंक्स
1: मैं
0: का
1: सीनियर सिटीजन हूँ ना, अब
0: जी।
1: तो नहीं देख रही हूँ, मगर पहले देख लिए सो बता रही हूँ। किक
0: मन
1: को
0: का कोई
1: मैं
0: गाना
1: अकेली
0: बोल
1: गई
0: दीजिए।
1: थी, ऑटो नहीं मिला तो किक देखी मैं अकेली जाके, समझ आ
0: अच्छा,
1: किस बंद भी हो गई अब
0: अरे रे रे रे,
1: हैदराबाद में,
0: जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: तो याद रह गया वो हैंगओवर तेरी बातों का दल।
0: ओ जरूर जरूर, बहुत बहुत ही अच्छा गाना है। आप गलत कहे हैं, आप उस जमाने की नहीं है आप
1: अभी भी वही बोलते लोग, हीरो को
0: जी जी
1: बोलते मैं भी वही समझती हूँ।
0: जी जी
1: तो छोटी
0: ओ
1: चीजा मेरे को दे, मेरे को बोलती मैं,
0: जी जी समझ
1: वो
0: गया।
1: खुश रहे ना भाई, दुख
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: परेशानियां तो सबको है,
0: हाँ
1: खुशी बांटने से बढ़ती।
0: जी, बहुत
1: बहुत
0: सच कहा
1: बहुत
0: आपने।
1: शुक्रिया आप इतना टाइम दिए मेरे को।
0: वेलकम। मैंने
1: और
0: हमारा आपका
1: भवेश
0: शुक्रिया, आपने हमको कॉल किया और हम आप हमको इतना पसंद करते
1: फर्स्ट
0: हैं, आपका
1: टाइम आए
0: बहुत
1: आप?
0: शुक्रिया। नहीं, महजबीन
1: हाँ
0: जी, मैं इससे पहले भी आपसे बात कर
1: मैं
0: चुका
1: बात
0: हूँ
1: कर चुकी है। अच्छा
0: जी
1: दो
0: जी
1: जगह थे शायद, कंफ्यूज हुई मैं
0: जी
1: इसलिए।
0: जी
1: ओके
0: ओके,
1: थैंक
0: थैंक यू सो मच मैडम।
1: यू।
0: तो जी हाँ दोस्तों, सभी लोग इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस बता रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा मैं बजाऊं क्या। चलिए हम अगले कॉलर देखते हैं, शायद वो हमें कोई आसान सा जवाब दे दे। हेलो रेनबो।
2: हेलो,
0: हेलो
2: मैं रमना यार तेलुगु में बोलता है। अच्छा
0: रमण्या गारु, चप्पंडी पर्ले दो नक तेलुगु कोड़ वस्तुदी, ఎలా ఉన్నారు?
2: బాగున్నాను, ఏం చెప్తున్నావు టాపిక్ చెప్పు।
0: ఇవాళ టాపిక్ సార్ చాలా సింపుల్ పెట్టాను సార్, కాకపోతే కొంచెం డిఫికల్ట్ అనుకోండి. ఏంటంటే మీ ఫేవరెట్ మూవీ, ఇంకా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్.
2: హిందీలోనా తెలుగులోనా?
0: మీ ఇష్టం సార్, పర్లేదు మీరు దేంట్లోనో చెప్పొచ్చు, కానీ నేను ప్లే చేయడం అయితే హిందీయే చేస్తాను సార్.
2: లేదు, నేను హిందీలో ఏం సరిగ్గా చూడలేదు, కానీ తెలుగులో చూశాను బాగా।
0: ఏది సార్
2: నేను తెలుగులో చూసాను, చాలా బాగా చూశాను, మాయాబజారు,
0: ఆ? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, చాలా అద్భుతమైన మూవీ సార్ అది, మాయాబజార్ ఎన్నిసార్లైనా చూడొచ్చు.
2: అదే చాలా చూశాను। లాగిరిలో ఓహో జగమే ఊగెనుగా ఊగెనుగా తూగెనుగా, అలల ఊపులో తీయని తలపులు వెలరేగే పరిగమ గుమలో వాటి మాటి పాట।
0: వావ్ సార్, వావ్, చాలా
2: అవునవును
0: చాలా మంచి పాట సార్ అది, నిజంగా. సావిత్రి గారిది కదా సార్ ఏమిటో?
2: అవునవును
0: అవును సార్, సావిత్రి గారిది తెలుసు, నేను చూసాను సార్ మాయాబజార్ చాలా సార్లు చూసాను సార్, ఘటోత్కచుడిది చాలా మంచిగా ఉంటుంది.
2: చాలా మంచిగా ఉంటుంది, శ్రద్ధి కదా।
0: అవును సార్. లేదు సార్, లేదు సార్, నేను జైదీప్ని,
2: ఇంకొక ఏమి ఎవరు ఉన్నట్టుంది?
0: ఆయన శ్రీత్, ఆయన శ్రీకాంత్ గారు, ఆయన ఆయనది కాదు ఇప్పుడు, నేను జైదీప్ని, ఆయనది కూడా చాలా
2: ఓకే,
0: బాగుండదు షో.
2: అదే అదే అదే అది చాలా సంతోషం నేను తీసుకున్నావు కాలు
0: నో ప్రాబ్లమ్ సార్,
2: మాట్లాడి నేను।
0: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీరు కాల్ చేశారు మాకు, మాకు ఇంత మీరు మెచ్చుకుంటారు మీరు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్
2: థ్యాంక్ యూ నాన్న।
0: ఓకే సార్. तो उन्होंने गाना गाकर भी सुनाया माया बाजार का, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, मैं चाहता हूँ कि सभी जाके देखो, एक ना बहुत ही एपिक मूवी है वो तो. तो चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ. हेलो रेनबो.
2: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून, आदाब जेडी जी।
0: सर कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो,
0: सर शेर
2: अल्लाह का
0: खान जी है ना?
2: शुक्र है, आपकी दुआ है, और सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब।
0: बहुत बहुत
2: बस
0: शुक्रिया
2: यही
0: सर.
2: दुआ करता हूँ हमेशा अल्लाह से, आपको और सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया. शेरखान जी है ना?
2: जी बिल्कुल
0: जी,
2: सही
0: देखो मैं भी
2: पहचाने आप।
0: पहचानने लग गया हूँ. कैसे हैं सर
2: माशाल्लाह
0: आप?
2: माशाल्लाह बिल्कुल।

0: बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ।
1: तो सर आज का टॉपिक बड़ा ही डिफिकल्ट है, बोल रहे हैं दूसरे हमारे सारे दोस्त लोग, ये बोल रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है चुनना कि कौन सा गाना ये लोग सबसे फेवरेट बनाते हैं। सर आप बताइए कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है।
0: गाना
1: जी
0: ये गाने तो ऐसे बहुत से, सही बात है, एक चीज का चुनाव करना बहुत, एक मूवी या एक गाने का चुनाव करना बहुत मुश्किल है,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: बस अब एक मौका मिल गया है तो थोड़ा बता देते हैं कि भाई एक एक मतलब सभी पसंद है, लेकिन एक को थोड़ा उसके लिए ये कर देंगे, अपन
1: जी
0: तरजीह दे देंगे। मुझे पुरानी फिल्में ज्यादा पसंद है और मेरे
1: हाँ जी
0: फेवरेट स्टार है राजेश
1: जी जी जी
0: राजेश खन्ना, और नए हीरो में है तो आमिर खान। इनके फिल्मों में भी एक मैसेज होता है आमिर खान की।
1: जी हाँ बाबू मोशाय जी
0: राजेश खन्ना बहुत फेवरेट हीरो है मेरे, उनके तो सारे पुराने फिल्में पसंद है मुझे।
1: जी जी
0: दुश्मन
1: जी
0: एक फिल्म थी उनकी, क्या
1: जी
0: फिल्म थी, उसमें क्या बेहतरीन सजा दिए थे उनको जज साहब। उनसे एक खून हो जाता है हीरो से, तो भी उनके द्वारा जो खून होता है तो उनको एक बेहतरीन सजा दी जाती है कि उनके परिवार का पालन पोषण करने की सजा देते हैं उनको,
1: अरे
0: ना
1: वाह
0: फांसी देते हैं ना उम्र
1: सर,
0: कैद
1: मैंने ये
0: देते
1: मूवी
0: हैं,
1: देखी है
0: और वो
1: जी
0: देते देते वो लोग दुश्मन कहलाते कहलाते एक प्यारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं
1: जी
0: उनके।
1: जी
0: जी,
1: जी जी बहुत ही खूबसूरत
0: और
1: मूवी है
0: ऐसी
1: सर।
0: रोटी फिल्म है, रोटी के लिए भी उसमें बताया गया है कि रोटी के लिए कितनी मेहनत करते
1: जी
0: हैं
1: हाँ
0: राजेश खन्ना, और बाद में फिर आखिरी में जब उनका अंत हो जाता है तो यही
1: जी
0: पूछते, ऊपर वाले से जरूर पूछूंगा ये पापी पेट किस लिए दिया था, और पेट
1: जी
0: ये
1: सर
0: पेट
1: बहुत ही
0: दिया तो ये
1: मीनिंगफुल
0: भूख
1: मूवी
0: क्यों
1: है
0: दिया
1: सर वो।
0: था।
1: जी जी जी
0: तो बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी, तो मुझे खास एक वो गाना पसंद है इनका, समझौता गमों से कर लो, समझौता
1: जी जी
0: गमों
1: जी
0: से कर लो, जिंदगी में गम
1: गम
0: भी
1: भी मिलते
0: मिलते
1: हैं
0: हैं, ओ
1: हो
0: पतझड़
1: जी
0: आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते
1: जी हाँ
0: हैं, ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो।
1: जी सर, मैं ताली बजा रहा हूँ सर, बहुत ही खूबसूरत से गाया सर आपने, बहुत ही अच्छा।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारे सॉन्ग है, और मेरे मुमताज बाजी को सलाम है, मैजबीन बाजी को भी सलाम है,
1: जी जी वो
0: मोहम्मद
1: भी
0: अफजल
1: सुन रहे
0: साहब,
1: हैं जी
0: वो भी मेरा नाम लेते हैं, याद करते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: शुक्रिया कहना चाहूंगा उन सभी भाई बहनों को,
1: जी हाँ
0: और
1: जी
0: आप भी मुझे इतना वक्त दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह
1: वेलकम
0: बहुत
1: सर,
0: अच्छा टैलेंट है आप में, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप।
1: थैंक यू सो मच सर। आपने मेरी कहानी सुनी
0: हाँ तो थोड़ी मिस हो गई सर, मैं थोड़ा नहीं सुन सका, मसरूफ हुआ
1: कोई बात
0: था।
1: नहीं सर, कोई,
0: हाँ
1: मैं फिर से अगले शो में मैं ज़रूर बजाऊंगा। थैंक
0: जी
1: यू
0: जी
1: सो मच
0: सर,
1: सर हमें कॉल करने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए, बहुत
0: ओके ओके,
1: शुक्रिया। हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। चलिए सर, वाकई में बहुत अच्छे गायक है, आज उन्होंने प्रूफ कर लिया, बहुत अच्छे से गाया गा, गा, गा, गाना गाया उन्होंने। चलो हम देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। हेलो रेनबो,
0: गुड आफ्टरनून सर,
1: गुड आफ्टरनून।
0: नरसिम्हा रेड्डी सर, प्रेमा अधिपेट, राजेंद्र नगर,
1: नरसिम्हा गारू एला नरमिरू।
0: चाना बाबू सर, बहुत अच्छा हूँ मैं तो।
1: जी सर बताइए, आप आज का टॉपिक सुना है।
0: जी सुना सर,
1: जी सर बताइए, तो आपका क्या है वो सबसे फेवरेट मूवी और सबसे फेवरेट गाना, हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है इसीलिए मैंने
0: बहुत
1: पूछा है।
0: बहुत मुश्किल में डाल दिया हमको।
1: जी
0: ऐसा है कि कौन सा बोलना है, क्या एक बोले तो फिर ऐसा दिल बोल रहा वो बोलूं कि ये बोलूं, ऐसा हो रहा मेरे को यहीं की। हाँ
1: जी जी
0: अब
1: जी
0: मैं बोलूंगा, देखो सर मेरा तो शोले है सर,
1: अरे वाह सर, एवरग्रीन है सर वो तो। मैं तो
0: ये
1: चाहता हूँ
0: तो
1: कि इसको ना ये क्या बोलते हैं वो अवार्ड मिले।
0: जी, वो
1: जी
0: तो मतलब वो अलग ही पिक्चर बना था, आज तक वैसा पिक्चर फिर नहीं बन
1: जी
0: सका
1: इसको
0: सर।
1: इंटरनेशनल अवार्ड मिले मैं चाहता हूँ।
0: जी जी सर,
1: जी
0: वो
1: सर
0: पिक्चर में जो है ना सर, ये ऐसे अलग ही मतलब वो आज तक बना ही नहीं वैसे पिक्चर,
1: हाँ सर
0: और
1: सच्ची में
0: सस्ते में और अच्छे में बने,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: उसमें एक दो मैसेज भी मिल जाता आपको
1: जी
0: दोस्ती
1: सर,
0: का उसका,
1: वाकई में बहुत ही खूबसूरत मूवी है वो।
0: और गाना जो बोले आप
1: जी
0: फेवरेट गाना जो है ना सर, ये अमराज पिक्चर में, हाँ
1: हमराज कौन सा वाला सर।
0: ना सर उठा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो,
1: जी जी जी जी हाँ जी हाँ जी
2: जबरदस्त गाना है साहब, वो सुनाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी
1: मैं
2: आपकी।
1: ज़रूर कोशिश करूँगा सर हमारे अगर
2: नहीं,
1: सिस्टम
2: मिल
1: में।
2: जाए।

हमारे पास सिस्टम में यही रिमिक्स गाना मिला है मुझे और गलती से ये आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैडम ने बोला है कि वो अभी इस जमाने की है, थोड़ा डिक चिक भी चलेगा।

0: पंचतुंडी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं, मेरे अंगने में जो गाना गाया था अमिताभ बच्चन जी, नहीं जी हाँ, वाकई में बहुत ही अच्छी मूवी है वो। चलिए देखती है हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो रेनबो,
1: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून
1: जी, मैं रेडियो शौकीन सर्वर है मेरा नाम,
0: सर्वर
1: बफरगढ़ हैदराबाद से
0: जी।
1: बात कर रहा हूँ।
0: जी हाँ जी, आपको कौन नहीं जानता है सर, रेडियो के सभी लोग
1: अरे अरे
0: जानते हैं आपको।
1: नहीं, शुक्रिया शुक्रिया सर, नवाजी का
0: सर कैसे हैं आप?
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, आप कैसे हैं
0: गुड सर, मेरी आपसे दूसरी
1: अभी?
0: बार बात हो रही है।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं कुछ अपने मतलब की बात है तो बात करता हूँ रेडियो पे,
0: नहीं
1: बोले तो
0: कोई
1: ये गानों से मोहब्बत है मेरे को।
0: जी सर, वो तो पता है, कोई बात नहीं।
1: हाँ जी हाँ, इसलिए मेरी फेवरेट फिल्म बहुत सारे इंग्लिश, जैसा वो अमिताभ बच्चन की नसीब में है ना,
0: हाँ जी
1: अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी। जी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: हाँ, तो इंग्लिश में मेरे फेवरेट रजर मोर, गैरी गैरी पैक, जॉन वेली,
0: ओके
1: डेविड नेवेन, और
0: वाव
1: मेरी
0: सर।
1: इंग्लिश बेहतरीन मूवी द गन्स ऑफ नेवरॉन
0: सब सब
1: जी,
0: बहुत
1: और
0: ही
1: लॉरेंस
0: लेजेंडरी
1: ऑफ
0: सॉन्ग्स है सर।
1: अरेबिया जी ये पसंद है, और तेलुगु में कैदी बाबाए, चले बाय
0: हाँ
1: बाय, ड्राइवर रामुडू, बाला नागम्मा, ये फेवरेट फिल्म है मेरे बहुत पुराने। मेरा
0: यस,
1: फेवरेट तेलुगु एक्टर वो शोभन बाबू,
0: हो सर,
1: और हिंदी में संजय खान,
0: अरे वाह सर,
1: वफा, शर्द, धड़कन, बाबुल की गलियां,
0: जी,
1: हसीनाओं का देवता, सबका साथी, सोने के हाथ,
0: जी
1: मेरे
0: सर,
1: फिल्म बहुत पसंद है। और
0: जी,
1: मेरा फेवरेट सॉन्ग है दोस्त मूवी का, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही
0: अरे
1: है,
0: वाह
1: चलना ही
0: सर,
1: जिंदगी है, चलती ही
0: जी
1: जा रही
0: जी
1: है।
0: जी जी मैं कोशिश
1: और
0: करूंगा सर,
1: मैं
0: जरूर।
1: ऐसा मेरे शायद ही कोई लम्हा जो गानों से, और तेलुगु में जैसा तकरीबन फिल्म जो जैसा एनटीआर और ये है ना, हिंदी
0: जी
1: में अमिताभ बच्चन के युगंधर,
0: जी जी जी
1: हिंदी में डॉन है,
0: हाँ जी
1: ऐसे फिल्म तकरीबन वो फिल्मों का वो मजा अलग ही रहता भाई।
0: हाँ सर, वो
1: और
0: तो
1: मेरे
0: बात
1: को
0: सही है
1: 70s से पहले के फिल्म बहुत पसंद है, और मिसेस
0: सर।
1: डायरेक्टर
0: कोई
1: जी,
0: कोई नए फिल्म भी है शामिल उस लिस्ट में?
1: नहीं मेरे को नए पसंद है, नए उतना मैं 90 के बाद के फिल्म मेरे को पसंद नहीं है, और मैं देखता भी नहीं, और मैंने तकरीबन देखा भी नहीं 90s के बाद के फिल्म बहुत कम, इत्तेफाक से
0: मैं समझता हूँ सर आपको, मैं
1: जी।
0: बहुत
1: क्यों
0: अच्छे से
1: बोले
0: समझता
1: तो
0: हूँ।
1: मैं फिल्मों के बारे में मैं बोला तो ऐसा दिखता, लेकिन शायद आपको भी पता है या नहीं, एक ऐसी मूवी है जिसमें 72 सॉन्ग्स है,
0: 72 सॉन्ग्स
1: बहत्तर
0: के
1: गाने
0: नाम है
1: हैं।
0: ना,
1: नहीं, 72 सॉन्ग्स है फिल्म में, मूवी में,
0: कौन सा है सर वो,
1: इंद्र सभा नाम है मूवी का,
0: कितने घंटों का मूवी है सर वो,
1: 3.5 घंटे का मूवी है,
0: मतलब पूरा मूवी सॉन्ग से ही
1: मिनट
0: भरा
1: तीन
0: रहता है?
1: तीन हाँ दो दो मिनट, 3-3 मिनट को सॉन्ग है उसमें।
0: अरे वाह,
1: और ऐसे भी, और एक कबीर बेदी जो की पहली फिल्म है, उसमें एक एक भी सॉन्ग नहीं है, हलचल मूवी है वो। और
0: अच्छा
1: एक BR चोपड़ा की कानून मूवी है, उसमें भी एक भी सॉन्ग नहीं है,
0: वाह सर।
1: वो भी ऐसे
0: सर
1: सॉन्ग ऐसे
0: सरवरेली जी, आप
1: जी।
0: आरजे के जैसा ट्राई क्यों नहीं कर लेते
1: अरे नहीं
0: हैं?
1: साहब, नहीं, इसमें ये मेरा ये शौक है साहब,
0: जी जी
1: प्रोफेशनल में शौक में फर्क होता,
0: जी
1: मैं क्यों बोले तो ये मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, और आज भी, और पता नहीं वो, और मेरे पास आप, मैं बोला था देखने करेंगे, 200 के करीब रेडियो से मेरे पास
0: हाँ सर, पता है सर,
1: जी
0: पता
1: हाँ,
0: है।
1: और
0: और
1: कैसेट
0: आपने
1: में
0: अभी
1: भी इतने
0: शोले
1: गाने
0: मूवी
1: मेरे
0: का
1: पास।
0: भी मुझे कैसेट भेजा है, मैं अभी अनाउंस करने ही
1: हाँ
0: वाला था उसको।
1: क्यों बोले तो अमिताभ बच्चन की शायद ही कोई ऐसी मूवी सॉन्ग की कैसेट, हर कैसेट है मेरे पास,
0: जी सर, वाकई
1: ऐसा
0: में बढ़िया है
1: किशोर,
0: सर।
1: रफी, मुकेश, GM दुरानी, पुराने पुराने अशरफ अली खान ने, बहुत
0: जी
1: ये
0: जी जी जी
1: गाने की रिक्वेस्ट थी, पता नहीं आपके पास रहता नहीं रहता। मैं
0: बताइए सर, देखेंगे हम, जरूर कोशिश
1: संजय
0: करेंगे।
1: खान, माय फेवरेट हीरो संजय खान, और मुमताज, मूवी का नाम है मेला
0: मेला बोलिए सर, नाम
1: जी
0: गाने का
1: हाँ,
0: नाम।
1: गाने का नाम है गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला,
0: अरे वाह सर वाह
1: ये
0: सर,
1: ऐसा
0: तालियां सर
1: अगर आप
0: तालियां,
1: सुनना
0: मैं
1: है तो
0: जरूर
1: मेहरबानी,
0: कोशिश
1: नहीं तो कोई
0: करूंगा,
1: बात नहीं।
0: मैं जरूर
1: ठीक है,
0: कोशिश
1: बहुत
0: करूंगा
1: बहुत
0: सर।
1: शुक्रिया, आप कीमती वक्त दिए आपका,
0: आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको कॉल किया और इतनी सारी
1: शुक्रिया
0: इतनी
1: शुक्रिया।
0: इतनी इतनी सारी बातें बताई
1: नहीं,
0: आपने।
1: निशा, मैं आपको और भी आपसे बात हुई तो अगर इसी टॉपिक पे हुए तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसा ऐसा
0: जी जी
1: जी।
0: समझ गया मैं,
1: शुक्रिया,
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया
1: आपका
0: सर
1: कीमती वक्त ले लिया,
0: जी,
1: थैंक
0: थैंक यू सो
1: यू।
0: मच सर। तो जी हाँ, ये सर के पास तो ना पूरा कैसेटों का और मूवीज़ का सॉन्ग्स का पूरा नॉलेज का भंडार है सर वरेली जी, ये हमारे बहुत ही रेडियो के शौकीन माने जाते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। हेलो रेनबो,
1: हेलो

0: मैं रामचंद्र और व्यापार से बोल रहा हूँ। हाँ
1: रामचंद्र जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक हूँ। अच्छा, आजकल तो सावन का महीना तो शुरू होने वाला है।
1: जी,
0: मेरे
1: शुरू हो चुका है कहीं
0: का
1: जगह
0: ये
1: पर।
0: मेरा पसंद का फिल्म है मिलन, आप जानते होंगे,
1: जी, मिलन।
0: नूतन और सुनील दत्त।
1: हाँ जी, सुनील जी का।
0: हाँ वही गाना, वही सिनेमा का ये है, सावन का महीना पवन
1: पवन
0: करे
1: करे
0: चोर।
1: चोर। जी,
0: हाँ बस वो आप जरूर सुनाएंगे।
1: मैं जरूर,
0: हम
1: मैं एक मिनट
0: उस जमाने के वाले हम लोग
1: सर है सर, मैं
0: हैं।
1: गाना जरूर सुनाऊंगा आपको। अभी मैं
0: ओके ओके।
1: पहले
0: हाँ
1: अमिताभ बच्चन जी का एक गाना बजाऊंगा, फिर अगला गाना आप ही का है
0: बस,
1: सर।
0: और थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक
0: ओके
1: यू
0: ओके,
1: सो
0: वेरी
1: मच हमें
0: गुड।
1: कॉल करने के लिए
0: ओके
1: और शेयर करने के लिए
0: ओके ओके,
1: सर।
0: थैंक यू थैंक यू
1: जी
0: वेरी मच।
1: जी सर। तो दोस्तों, बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं, माफ़ करना यार दोस्त, मेरे सारे दोस्तों को मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कॉल्स लेने की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दो गाने बजा देता हूँ ताकि हमारा महफिल थोड़ा बोरिंग ना हो और लोग फिर मुझे अंदर ही अंदर कोसे ना। वैसे तो नहीं कोसते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त पूरे बहुत प्यारे हैं। और चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो टाइम हो चुका है 1:53 इन स्टूडियोज़, और हम अभी बात करेंगे हमारे आखिरी कॉलर के साथ क्योंकि टाइम की पाबंदी है। तो देखते हैं हमारा कॉलर कौन है। हेलो रेनबो
1: हेलो।
0: जी। मैडम कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बढ़िया, आपके गाने सुन रहे बहुत खुश है।
0: थैंक यू सो मच
1: मैं
0: मैडम।
1: और बहुत खुश हो जाऊंगी अगर मेरा गाना डाले तो आप।
0: मैं ज़रूर कोशिश करूंगा मैडम, क्योंकि अभी टाइम की भी पाबंदी है और ये आखिरी कॉल है। बता दीजिए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
1: तेलुगु मूवी है जुलाई, और
0: ओके,
1: गाना है ओ मधु ओ मधु।
0: डेफिनेटली बजेगा मैम, मैं बता दूंगा, क्योंकि
1: उसका नाम भी
0: हमारी
1: मधु
0: जो
1: है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनको डेडिकेट करूँ।
0: डेफिनेटली क्योंकि हमारी जो अगली आरजे है वो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, ज्योतिर्मय जी, और वो ज़रूर ओ मधु बजाएंगी, मैं बताऊँगा उनको।
1: बोले आप समझ गए होंगे ना। थैंक
0: जी हाँ जी, मैं समझ गया।
1: यू वेरी मच।
0: नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और
1: गाना डालिए ना,
0: जी
1: वो गाना डालिए ना तेलुगु
0: ज़रूर
1: मूवी
0: ज़रूर
1: जुलाई का।
0: ज़रूर
1: ओके,
0: डालेंगे, ज़रूर मधुलता जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: बात करती, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
0: वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच मैडम। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, और मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं तो वैसे भी दिन भर भी बैठ सकता हूँ, लेकिन स्टूडियोज़ वाले अलाउ नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए, क्योंकि अगले वाले प्रोग्राम को भी तो मौका देना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगला प्रोग्राम बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि अगला प्रोग्राम है जश्नी हैदराबाद, और वो टेस्टी प्रोग्राम को बोलने वाली है ज्योतिर्मय जी, वो बहुत अच्छी शेफ है। तो जी हाँ, तो चलिए आज हम आपको यहीं पर छोड़ चलते हैं, और आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी जगह के बारे में बात किया, हम लोगों ने मानसून के बारे में बात किया, मैंने आज एक कुछ नया चीज़ किया जो था, मैंने एक कहानी सुनाई आपको, और बहुत लोगों ने उसे पसंद

भी किया और व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो बहुत लोगों ने किए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं अश्विन जी कोठी कुशल मार्केट से, और वो हमें संदेश भेजते हैं, जीवन सरल तभी होगा जब आप सीख जाओगे कि अपनाना क्या है, बदलना क्या है और छोड़ना क्या है। वाह सर वाह, वाकई में बहुत ही करेक्ट मीनिंग है ये आपने जो बोला है कि हम तभी सरल से जी पाएंगे जो चीज़ें हमें छोड़नी है और जो अपनानी है, क्योंकि लोग अक्सर उसी को पकड़ बैठते हैं जिसको छोड़ना होता है। तो जी हाँ, बहुत शुक्रिया अश्विन जी आपका ये संदेश के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए अशोक जी, जो कहते हैं आपकी कहानी बहुत पसंद आई मुझको, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। और ये लिखते हैं, हर ख्वाब को हम बुनते गए, बुनते बुनते फलक में पहुंच गए, टूटे जो ख्वाब मेरे तो इस कदर जमीन पे आ गिरे कि फिर उठने का होश खो गए। वाह सर वाह, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, भगवान अगर हमें गिराता है तो ज़रूर उठाता भी है। बहुत शुक्रिया आपका। और सरवर अली जी तो कैसेट्स भेजे हैं हमको, अब हम जो भी गाना बजाते हैं वो कैसेट भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया सरवर अली जी एंड बहुत सारे। एंड इन्होंने मैसेज किया है, कामर रेड्डी नुंडी सावित्री साई रेड्डी कृष्णा गारू, थैंक यू सो मच मेरे माँ प्रोग्राम विंटुनारू। चलिए अभी हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए प्रोग्राम और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए JD को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए FM रेनबो, क्योंकि रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब ऐसे वस्फ का नाम है जिसके ज़रिए इंसान अपनी बातों की पहचान हासिल करता है या अच्छे अखलाक अपनाता है। हकीकत अदब यह है कि इंसान में अच्छी आदत जमा हो जाए। ज़्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। शरीयत मुतहरा में अदब को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। एक इंसान को चाहिए कि अखलाक व आदाब को इस्तेवार करने की कोशिश करे। हर फर्द अपनी ज़िंदगी में उम्दा बेहतरीन नमूने का मोहताज होता है, जिसके सांचे में ज़िंदगी ढाल कर अपने अखलाक व आदाब को शरीयत के मुताबिक बना सके। हर शोबे में अदब लाजमी है, चाहे इल्म हासिल करना हो या दीन व दुनिया के किसी भी शोबे में हो। अखलाक व आदाब हर सूरत में अजबज ज़रूरी है। अदब पहला खरीना है मोहब्बत के खरीनों में। अदब इंसान की जीनत है, जिसकी वजह से आदमी लोगों में इम्तियाजी मुकाम व मर्तबा हासिल करता है। वो हर एक की निगाह में महबूब हो जाता है और सब पर फौकियत ले जाता है। तमाम इबादात में अदब का हुक्म दिया गया है। सारी इबादतों में अगर अदब व एहतराम को मलहूज रखा जाए तो वो महमूद व मकबूल हो जाती है। हुकूक इबाद में अदब की बड़ी अहमियत है। इंसानी हयात व कायनात की रूह असली अदब में मुजमिर है। इंसान की तख्लीक के बाद सबसे पहला हुक्म उसे अदब ही का मिला। वो एक दूसरे की ताज़ीम व सलामती का था। एक दूसरे के अदब व एहतराम से नफ़रतों की आग बुझ जाती है। जज्बाए हमदर्दी अदब जाहिर होता है। दिलों में उन्स व उल्फत के चराग रोशन होते हैं। इंसानी ज़िंदगी में अदब व अखलाक को जो अहमियत व वक़्त हासिल है, किसी से पोशीदा नहीं। हर मज़हब और धर्म के लोग, बल्कि दुनिया में हर बसने वाला हर इंसान अच्छे अदब व अखलाक व किरदार, अच्छे बर्ताव का खायल है। अखलाकी खूबियों को हासिल करना फितरत सलीम का अहम तकाजा है, बल्कि बुनियादी ज़रूरत भी। अदब व अखलाक के ज़रिए इज्तिमाई व इनफरादी ज़िंदगियों में तवाज़ुन, हम आहंगी पैदा होती है। लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, जबकि बेअदबी बदखलकी से तमाम बुराइयां जन्म लेती है, जैसे नफ़रत, अदावत, इख्तलाफ

ये उफक मिट्टी की तश्कील अमल का सबसे पहला मरहला है और इसके बाद ऊपर की उफकें बनती हैं। उफकों की इस तरतीब को मिट्टी का तबक यानी सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। इन तीन सतहों के नीचे जो चट्टान होती है उसे बुनियादी चट्टान यानि पेरेंट रॉक या बेड रॉक कहते हैं। मिट्टी जैसी पेचीदा और तनु चीज़ ने हमेशा साइंसदान की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। इसकी अहमियत को समझने के लिए मिट्टी का साइंसी मुताला करना ज़रूरी है। मिट्टी की दर्जाबंदी इस मकसद के हासिल करने की एक कोशिश है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के ज़मीनी खदोखाल, ज़मीनी अशकाल, आबोहवाई अकलाम और नबाताती किस्में पाई जाती हैं। इनकी मजमूई कारकर्दगी की वजह से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी यानि उर्वारा तश्कील होती है। कदीम ज़माने में मिट्टी की दर्जाबंदी दो ग्रुपों में की जाती थी, उसारा यानि जरखेज़ और गैर जरखेज़। 16वीं सदी में दर्जाबंदी इनकी अंदरूनी सिफात की खारजी शक्ल व सूरत जैसे साख्त, रंग, ज़मीन की ढलान और मिट्टी में नमी की बुनियाद पर की गई। साख्त की बुनियाद पर मिट्टी की अहम किस्में रेती, गली, गादी और दोमट वगैरह हैं। रंग की बुनियाद पर लाल, पीली और काली वगैरह मिट्टी की अहम किस्में हैं। आज़ादी के बाद मिट्टी का साइंसी सर्वे कई एजेंसियों ने किया। 1956 में क़ायम हिंदुस्तानी मिट्टी सर्वे यानी सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ मुंतखबा इलाकों जैसे दामोदर घाटी में मिट्टी का जाम मुताला किया। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे, लैंड यूज प्लानिंग और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के तहत कई इदारों ने हिंदुस्तानी मिट्टी पर काफ़ी मुताला किया। मिट्टी का मुताला करने और इसे आलमी सतह पर मुवज़ना करने के लिए ICAR ने रियासताए मुतहद अमरीका के शोब ज़रात USDA के सॉयल टैक्सोनॉमी के मुताबिक हिंदुस्तानी मिट्टियों की इनकी फितरत और सफात की बुनियाद पर दर्जाबंदी की है। सैलाबी मिट्टी भी मिट्टी की एक किस्म है। सैलाबी मिट्टी शुमाली मैदानों और नदी घाटियों में फैली होती है। इन मिट्टियों के तहत मुल्क के कुल रकबे का 40% हिस्सा आता है। ये रसूबी मिट्टियाँ हैं जो नदी नालों के ज़रिए लाई गई और जमा की गई हैं। राजस्थान के पतले गलियारे से होकर गुजरात के मैदानों तक फैली हुई है। यह जज़ीरा नुमा खत्ते में मशरक़ी साहिल की डेल्टा और नदी की घाटियों में पाई जाती है। काली मिट्टी दक्कन के पठार का ज़्यादातर हिस्सा है जो इससे ही ढका हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा के बालाई गजगाहों और दक्कनी पठार के शुमाली मगरबी हिस्से में काली मिट्टी काफ़ी गहरी है। इन मिट्टियों को रेगर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी आमतौर पर चिकनी, गहरी और गैर नफूजी होती है। नम होने पर यह मिट्टी फूल कर चिपक जाती है और खुश्क होने पर सिकुड़ जाती है। गर्मी के मौसम में इन मिट्टियों में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और इस तरह इनमें खुदकार जुताई की शक्ल नमूदार हो जाती है। सुस्त सराइयत और नमी के ज़ाया न होने की वजह से काली मिट्टी की नमी लंबे अरसे तक बनी रहती है, जो फसलों को, खासकर बारिश और मुनसर फसलों को, खुश्क मौसम के दौरान भी ज़िंदा रखती है। कीमियाई हैसियत से काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ज़्यादा मकदार में होते हैं। इसमें पोटाश भी होता है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और नामियाती मादों की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग गहरे काले से भूरे रंग तक होता है। लाल और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी रोएदार आतिशफिशानी चट्टानों से दक्कन पठार के मशरक़ी और जुनूबी हिस्से के कम बारिश वाले इलाकों में तश्कील पाती है। मगरबी घाट के कोहे पाई जोन यानि पेडमाउंट जोन के साथ लाल दोमट मिट्टी का एक लंबा इलाका फैला हुआ है। लाल और पीली मिट्टियाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में और वस्ती गंगा मैदान के जनूबी हिस्से में पाई जाती हैं। लहरेदार चट्टानों में लोहे के वसी इंतशार की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल है। जब लोहा आबाई शक्ल में होता है तो रंग पीला नज़र आता है।

बारीक दाने वाली लाल और पीली मिट्टियाँ उमूमन जरखेज होती हैं, जबकि बालाई ज़मीनों में पाई जाने वाली मोटे दाने की मिट्टियाँ जरखेजी में कम होती हैं। आमतौर पर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी यानी लातिनी लफ्ज़ लेटर से माखूज है, जिसका माने ईंट होते हैं। लेटराइट मिट्टी ज़्यादा हरारत और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। ये मुंतखा हारास की बारिश की वजह से बकसरत तकतीर के नतीजे में बनी है। जब बारिश होती है और नमक का सिलिका बह जाता है और लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मरकबात से भरपूर मिट्टी पीछे रह जाती है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मकदार इन जरासीम की वजह से जल्द ख़त्म हो जाती है, जो ज़्यादा हरारत में भी ज़िंदा रहते हैं। और मिट्टियों में नामी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और चूना कम होता है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटाश की मकदार ज़्यादा होती है। इसलिए लेटराइट मिट्टियाँ ज़राअत के लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं हैं। फिर भी देसी खाद और कीमियाई खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की काश्तकारी के लिए जरखेज़ बनाया जा सकता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला का लाल लेटराइट मिट्टियाँ का जो कि बागबानी के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं। लेटराइट मिट्टियों से वसी पैमानों पर ईंट बनाई जाती हैं, जो घरों की तामीर में इस्तेमाल होती हैं। ये मिट्टियाँ जजीरे नुमा पठार के ऊंचे इलाकों में बनी हैं और ख़ास तौर पर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और आसाम की पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। खुश्क मिट्टी का रंग लाल से लेकर भूरा होता है। ये आमतौर पर साख्त में रेतीले और फितरत में नमकीन होती हैं। कुछ इलाकों में नमक की मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि नमकीन पानी की तबखीर खाने का नमक हासिल किया जा सकता है। खुश्क आब हवा, ज़्यादा हरारत और तेज़ रफ्तार तबखीर की वजह से इसमें नमी और ह्यूमस की मकदार कम होती है। नाइट्रोजन नाकाफी होता है और फास्फोरस हसबे मामूल होता है। मिट्टी के निचले उफक में कंकर की परत होती है, क्योंकि नीचे की तरफ चूने की मकदार बढ़ती जाती है। निचले हिस्से में कंकर की परत बनने की वजह से पानी रसना बंद हो जाता है, और जब आबपाशी की जाती है तो पौधों की पायदार नशोनुमा के लिए मिट्टी की नमी बरकरार रहती है। खुश्क मिट्टियाँ ख़ास तौर पर मगरबी राजस्थान में तश्कील पाती हैं, जहाँ खुश्क ज़मीनी वज़ा ख़ता की खसूसियत पाई जाती है। ये मिट्टियाँ कम जरखेज़ होती हैं और इनमें ह्यूमस नामी मादे भी बहुत कम होते हैं। खारी मिट्टी और इनको सारा मिट्टी भी कहा जाता है। खारी मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का तनासुब ज़्यादा होता है और गैर जरखेज़ होते हैं और पौधों की नशोनुमा नहीं कर पाती। खुश्क आबोहवा और नाखुशपन निकासी की वजह से इनमें नमक ज़्यादा होता है। यह खुश्क और नीम खुश्क दलदली और पानी से भरे इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी साख्त में रेतीली और दोमट मिट्टियाँ होती हैं। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। नमकीन मिट्टियाँ मगरबी गुजरात, मशरक़ी साहिल के डेल्टा और मगरबी बंगाल के सुंदरबन इलाकों में काफ़ी हद तक फैली हुई है। कुछ जुनूबी मगरबी मानसून की वजह से नमक के ज़रात खशरास की तरह जमा हो जाते हैं। डेल्टा में समंदरी पानी के दाखिल होने से खारी मिट्टियों का फ़रोग होता रहता है। ज़्यादा ज़रात के इलाकों में बकसरत आबपाशी की वजह से खसूसन सब्ज़ इलाकों के सैलाबी मिट्टियाँ खारी हो जाती हैं। खुश्क आबोहवा की हालत में कसीर मकदार में सिंचाई यानी कैपिलरी एक्शन को फ़रोग देती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह पर नमक की परत जम जाती है। ऐसे इलाकों में बिलखसूस हरियाणा और पंजाब में किसानों को मिट्टी और नमक की शोरियत के मसले को हल करने के लिए जिप्सम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। पीटी मिट्टी ज़्यादा बारिश और ज़्यादा नमी वाले इलाके में पाई जाती है, जहाँ नबातात की अफजाइश अच्छी होती है। इस तरह मुर्दा नामी मादों की वाफर मकदार इन इलाकों में जमा होती रहती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के ह्यूमस और नामी मादों में इजाफा होता रहता है। इन मिट्टियों में नामी मादों की मकदार 40 से 50% तक होती है। ये मिट्टियाँ बिहार के शुमाली हिस्से, उत्तरांचल के जनूबी हिस्से और मगरबी बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के साहिल इलाकों में पाई जाती हैं।

जंगलाती मिट्टी जैसा कि नाम से पता चलता है, जंगलाती मिट्टी जंगलों में तश्कील पाती है जहाँ काफ़ी बारिश होती है। यह मिट्टी जिसमें पहाड़ी माहौल में बनी हुई, इस पर मुनस्सिर अपनी साख्त और तरतीब में मुख्तलिफ होती है। वादियों में दोमट और गादवाली होती हैं और ऊंची ढलानों पर मोटे दाने वाली होती है। हिमालय के बर्फीले इलाकों में फरसूदगी से दो चार होती है और कम ह्यूमस की वजह से तेजाबी हो जाती है, लेकिन निचली वादियों में पाई जाने वाली मिट्टी जरखेज होती है। मिट्टी की पस्तकारी यानी सॉयल डिग्रेडेशन हम देखें, वसी मानों में मिट्टी की पस्तकारी की तारीफ जरखेजी में कमी की जाती है। जब ताजियाती दर्जा कम होता है और मिट्टी की गहराई फरसूदगी और बेजा इस्तेमाल से कम होने लगती है, मिट्टी की पस्तकारी हिंदुस्तान में मिट्टी के वसायल के खात्मे की असल वजह है।

समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा। आज हम बात करेंगे जिंदगी की कुछ सच्ची बातों पर और साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार हिंदी गीत। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई वक्त है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। खुशी हो या गम, दोनों ही गुजर जाते हैं, ये हकीकत भी है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह आती है। इसी सच्चाई को बयान करता है फिल्म वक्त का ये खूबसूरत गीत, जिसके बोल है आगे भी जाने ना तू

सामाइन, स्टूडियोज़ की घड़ी में 10:01:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम एन नए रंग, जिसमें हम आपको गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत सुना रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं वक्त के उन्वान पर। जी हाँ, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हम अक्सर सोचते कुछ है और होता कुछ और है। जी हाँ बिल्कुल, पुरानी फिल्मी गीत हमें ये सिखाते हैं कि हालात जैसे भी हो मुस्कुराते रहना चाहिए। जब हम पुराने हिंदी गाने सुनते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ, वो सच्चे दिन और सच्चे लोग याद आते हैं। आइए इस सच्चाई को महसूस करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में इस लाजवाब गीत के साथ।

तो सामिन, जी हाँ बेशक, जो पल आने वाला है वो गुजरना तो उसे है ही है। जैसे कि आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है उसमें जो रिश्ते हैं वो बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। जी हाँ, रिश्तों की जो मिठास, जो एतमाद है वो ख़त्म हो चुका है। बात करें अगर सच्ची मोहब्बत और सच्चे दोस्त की, वो तो अब मिलना मुश्किल ही है। जब कोई दिल तोड़ता है तो इंसान बिल्कुल अकेला सा हो जाता है, लेकिन यही अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है। इस सच्चाई को बयान करता है फिल्म अमर प्रेम का ये सदाबहार गीत, जिसके बोल है चिंगारी कोई भड़के।

वाह, क्या खूबसूरत अल्फाज थे किशोर कुमार की आवाज में। बिल्कुल, आवाज का जादू। दुनिया में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। लोग मिलते हैं, कारवां बनते हैं और फिर रास्ते जुदा भी हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच्चा इंसान कभी हार नहीं मानता। वो अपनी धुन में बस चलता ही रहता है, चाहे हालात जैसे भी हो। जिंदगी का जो सफर है वो कभी रुकता नहीं है। इस हकीकत और सच्चाई को समेटे हुए मुकेश साहब की आवाज में ये गीत सुनते हैं, जिसके बोल हैं आवारा हूँ।

दोस्तों, FM 101.9 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं। उर्दू प्रोग्राम नैरंग में गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत हम आपको सुना रहे हैं पुराने हिंदी फिल्में गीत, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं वक्त और ज़िंदगी के हालात के बारे में। जी हाँ, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी हार का सामना करना पड़ता है और कभी जीत का। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता, जीत आखिरकार उसी की होती है। हाँ, ये तो ज़रूरी है, जो हार नहीं मानता है और अपनी मेहनत में तग वो दो करता है, तो आखिरकार जीत तो उसी की होगी ना। जी हाँ, हालात चाहे कितने ही ख़राब हो, एक नई सुबह ज़रूर आती है। इसी हौसले को बढ़ाता हुआ फिल्मी सफ़र का ये अगला खूबसूरत गीत, जो कि लिया गया है फिल्म आपकी कसम से, जिसके बोल हैं जिंदगी के सफर में

जी हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी के सफ़र में जो लम्हे एक बार चले जाते हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आते हैं वक्त की, इसीलिए हमको रहते हुए कद्र करनी चाहिए और अपना जो वक्त है उसे कीमती कामों में गुजारना चाहिए। दुनिया में जहाँ हर तरफ मतलब की बातें हैं, वहाँ एक सच्चा दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होता। दोस्त वो है जो आपकी खामोशी को भी समझ ले और बुरे वक्त

दोस्तों, आज के दौर में जहाँ सब कुछ आरजी लगता है, यानी हर चीज़ कुछ वक्त के लिए आती है और फिर वो वक्त चला जाता है और वो चीज़ भी वापस चली जाती है, ऐसे में सच्ची मोहब्बत का जो एहसास है वो बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, सच्ची मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी और एहतराम का नाम है। जब किसी से सच्चा लगाव हो तो इंसान हर हाल में उसका साथ निभाता है। मोहब्बत की इसी पाकीज़गी को बयान करता है अगला गीत, जिसके बोल है प्यार में कभी कभी।

स्टूडियोज की घड़ी में 10:35 और 50 सेकेंड्स हो चुके हैं। समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग में, पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीली गाता जा, जिसमें हम अब बात कर रहे हैं वक्त, जिंदगी और

मुख्तलिफ जो जिंदगी के हालात है उससे मुतालिक, और साथ ही साथ हम आपको सुना रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ, दुनिया जो है वो एक मेले की तरह है जहाँ लोग हर दिन आते हैं और हर दिन चले भी जाते हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ ना कोई मुस्तकिल है और ना ही किसी की दौलत हमेशा रहने वाली है। अगर कुछ बाकी रहने वाला है तो वो है इंसान का अच्छा अखलाक और उसकी हसीन यादें। जी हाँ, राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर का ये फलसफियाना गीत जिंदगी के इस सच को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से लिया हुआ।

और सच्चाई का, वक्त का जो ये कारवां है आगे बढ़ रहा है। आइए अब वक्त और जिंदगी के उस खूबसूरत एहसास पर बात करते हैं जिसे हम सुकून और अंदरूनी आवाज़ कहते हैं। हम जिंदगी भर दुनिया की दौड़ में भागते रहते हैं, कभी पैसा, कभी नाम और शोहरत के पीछे, लेकिन सच ये है कि असल जो खुशी ही है और जो सुकून है तब मिलता है जब इंसान अपने आप को पहचानता है। क्योंकि जब दिल साफ हो तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो खूबसूरत लगती है। बाज़ औक़ात दिल बेवजह उदास हो जाता है और ऐसे में बारिश की बूंदें दिल के जख्मों पर मरहम का काम करती हैं। तन्हाई का भी अपना एक सच है जो हमें गहराई से सोचने का मौका देता है। इसी एहसास को लफ्जों में पुराता हुआ ये अगला गीत हम सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, स्टूडियोज की घड़ी में 10:47 और 50 सेकेंड्स हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू का नैरंग प्रोग्राम, जिसमें गीत सुरीली गाता जा सिलसिले के तहत हम आपको सुना रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीत। जिंदगी में तो हर चीज़ वैसे हमारे हिसाब से नहीं होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो हमारे बस में नहीं है, उसे वक्त पर छोड़ देना ही अकलमंदी है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल, सब्र का जो फल होता है वो बहुत ही मीठा होता है। जहाँ एक रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ से एक नया रास्ता खुलता है। मौत के बाद जिंदगी और अंधेरे के बाद उजाला ही कायनात का सबसे बड़ा सच है। पुरानी यादों को पीछे छोड़कर वक्त रहते जिंदगी में आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। इस जोश और वलवले को जगाता हुआ मोहम्मद रफी की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच अल्फाज में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा होता है। जब रिश्ते गहरे होते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दो सच्चे दिल एक दूसरे की खामोशी को भी पढ़ लेते हैं। कभी-कभी जिंदगी के बड़े फैसले अल्फाज से नहीं बल्कि दिल की गहरी खामोशी से होते हैं। जिंदगी में सब कुछ वक्त रहते पा लेना ही कामयाबी नहीं। सच तो ये है, जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहना और शुक्र अदा करना ही असल अच्छाई है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दिल को जो सुकून मिलता है ना, वाह, वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इंसान की इसी मासूमियत और शुक्रगुजारी को बयान करता है ये खूबसूरत गीत, जो कि लता मंगेशकर की आवाज़ में है।

आइए सुनते हैं नैरंग के बज्म की अगली पेशकश, पयामे शब। तहरीर वो पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

समय दिल तो चाहता है कि मैं यूं ही आपको गीत सुनाते जाऊं और आपसे बातें करते जाऊं, लेकिन स्टूडियोज़ की घड़ी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती।

समयन, अभी आपने समाप्त किया पयाम शब। तहरीर व पेशकश थी जनाब नदीम अख्तर जैदी की। इसी के साथ समयन, आज की हमारी ये उर्दू की नैरंग बज़्म यहीं पर इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल इन्हीं मीटर्स पर 9:30 पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब खैर, जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज़ की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप बारी बारी में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे।
1: के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय

0: समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform.

0: रफू चक्कर मूवी का आपने ये गीत सुना। शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज, गुलशन बावरा का लिखा ये गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसको आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम आपका अपना मनपसंद, गीत मेरे मनमीत।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: I like you.
1: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
0: ठहरो। अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
2: ऐसा क्या?
1: हाँ।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से

0: ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 पहली जुलाई से प्रभावी नहीं रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस साल के सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस है। नीति आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को गति देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की और इस पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में नियमों के सरलीकरण, व्यावसायिक सुगमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और देश के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने की भविष्य योजना प्रस्तुत की गई है। फीफा विश्व कप में अमेरिका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच चल रहा है। नॉर्वे ने पहले हाफ के खेल में एक गोल की बढ़त बना ली है। उसकी ओर से एंटोनियो नूसा ने खेल के 39वें मिनट में गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi hold a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries of Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for the interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. Japanese Prime Minister Sunita Kaichi is arriving in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This marks his first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on the regional and global issues of mutual interest. A correspondent reports that India and Japan share a long-standing

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, समय हुआ है 12:11 और 20 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ। ये रात मुझसे बहुत कुछ कहती है, ये रात मुझसे बहुत कुछ कहती है, तुम्हारी यादों की लहर आंखों में बहती है। दुनिया सो जाती है चैन की नींद, मगर एक तन्हाई ही है जो रात भर मेरे संग जागती रहती है।

मैं चाहती हूँ ये साथ रहे तेरा मेरा सदियों तक यूं ही, जैसे चांद का नाता है तारों से हर कहीं। बदल जाए चाहिए पूरी कायनात मगर तू रहे मेरे पास और मैं तेरे पास यूं ही।

मैंने चुरा लिया है मन कुछ इस अदा के साथ, मैंने चुरा लिया है मन कुछ इस अदा के साथ कि अब धड़कनें चलती हैं बस तुम्हारी सदा के साथ।

धूप तेज हो तो मैं आंचल बन जाऊंगी, धूप तेज हो तो मैं आंचल बन जाऊंगी, तुम्हारी हर राह में मैं छाया बनकर साथ निभाऊंगी।

समय हुआ है 12:32:45। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। अंजू के साथ आप हैं इस खूबसूरत सफर पर।

चेहरा तुम्हारा जैसे कोई ताज़ा गज़ल हो, चेहरा तुम्हारा जैसे कोई ताज़ा गज़ल हो, तुम्हें देखकर हर पल नया तराना गुनगुनाता हूँ मैं।

मेरे अरमानों को पंख तुम्हारी मोहब्बत ने दिए हैं, मेरे अरमानों को पंख तुम्हारी मोहब्बत ने दिए हैं। देख लो अब जहां भी जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे।

नजरों ने मेरी ऐसा जादू देखा है हर सू, नजरों ने मेरी ऐसा जादू देखा है हर सू कि जिधर देखूं उधर बस तुम्हारी ही सूरत दिखाई देती है।

दोस्तों, एक घंटे का इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगले घंटे यानी 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन ने ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8.50 रूपये हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12.50 रूपये से घटकर 7.50 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत

0: के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसका 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अभी भी एक प्रयोग है, जिसका प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों में एथेनॉल आवंटन के बारे में तेल विपणन कंपनियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संबंधी कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अटॉर्नी जनरल के बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नॉर्वे ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अगले दौर में जगह बना ली है। नॉर्वे के लिए एंटोनियो नूसा ने 39वें और एरलिंग हालंद ने 86वें मिनट में गोल किया और टीम को जीत दिलाई। इस तरह नॉर्वे राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में सफल रहा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The 29th National E-Governance Conference will be held in Jaipur from today. The two-day conference will take place at the Rajasthan International Centre and is being jointly organised by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology and the Government of Rajasthan. The theme of this year's conference is Viksit Bharat 2047, AI-enabled, data-driven and secure digital governance. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma will inaugurate the event. An exhibition will also be inaugurated, while several digital governance initiatives and innovations of the Rajasthan government will be launched. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with PM Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. Center has revised the export levy rates on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight's

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 13 सेकंड। मैं हूँ अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीत सुहाने। इस घंटे भी आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत, तो रहिए मेरे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दुनिया भर की नजरों से छुपा कर रख लो मुझे, दुनिया भर की नजरों से छुपा कर रख लो मुझे, उम्र भर जीना है मुझे तेरी इन निगाहों के साए में।

तुम आए तो बहार आ गई इस सूने जिंदगी में, तुम आए तो बहार आ गई इस सूने जिंदगी में, अब तो मेरी हर सांस तेरी मोहब्बत से महकती है।

तुम्हारा मेरे जीवन में होना एक खूबसूरत शायरी सा लगता है। तुम्हारा मेरे जीवन में होना एक खूबसूरत शायरी सा लगता है, हर एक लम्हा जैसे मोहब्बत की कोई नज्म सी बुनता है।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ अंजू आपके साथ और समय कह रहा है कि 1:28 और 10 सेकेंड।

मोहब्बत का इजहार जरा हौले से करो, ये दुनिया सुन लेगी। मोहब्बत का इजहार जरा हौले से करो, ये दुनिया सुन लेगी, क्योंकि धड़कनों की सरगोशी भी यहाँ खबर बन जाती है।

नजरें मिली तुमसे और होश खो बैठे हम, नजरें मिली तुमसे तो होश खो बैठे हम, न जाने कैसा ये जादू तुम्हारी नाखूनी कर दिया।

तेरी निगाहों की इनायत कुछ इस तरह हुई हम पर, तेरी निगाहों की इनायत कुछ इस तरह हुई हम पर कि हम खुद को ही भूल गए तेरी मोहब्बत के सफर पर।

तुम्हें देखना जैसे खुदा की इबादत करना है, तुम्हें देखना जैसे खुदा की इबादत करना है। न जाने कितनी शिद्दत से उसने तुम्हें तराशा होगा।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजकेशन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजकेशन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान के अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपए से घटकर 8 रूपए 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रूपए 50 पैसे से घटाकर 7 रूपए 50 पैसे कर दिया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी विजया मेहता ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई भाषा, नया नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आयरलैंड से 2020 श्रृंखला 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम इस श्रृंखला में उतरेगी। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 से फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

इबादत की तरह पाक है ये एहसास इश्क, इबादत की तरह पाक है ये एहसास इश्क। अगर ये खता है तो ये खता बार बार हम करेंगे।

किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, लेकिन जब ये मोहब्बत किसी से पहली बार हो तब क्या होता है? तब होता यह है कि ना नींद आंखों में ठहरती है, ना दिल को कहीं सुकून मिलता है। ना नींद आंखों में ठहरती है, ना दिल को कहीं सुकून मिलता है, जब पहली बार मोहब्बत का यह हसीन फूल दिल में खिलता है।

पास जैसे रूह में उतरी कोई ताजी हवा है। ये दिल समझ ही नहीं पाया कि ये कोई जादू है या फिर कोई दर्द-ए-शिफा है।

कभी देखा ना था खुद को इस आईने में, खुद को खोते हुए। कभी देखा ना था खुद को इस तरह आईने में खोए हुए। ये पहले इश्क का असर है कि हम जाग तो रहे हैं लेकिन सोए हुए हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रिकॉर्ड के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से इस क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित

जमीनी स्थिति का जायजा लिया और लोगों के जीवन की रक्षा तथा सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमेरिका के टेक्सास में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: रोका कई बार मैंने मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। मुमकिन नहीं कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, मुमकिन नहीं कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, जितनी चाहते हैं उसमें तो कई जिंदगियां लगेंगी, पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी कि पूरी हो सभी चाहते इसी एक जिंदगी में। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अलचित के साथ।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

रहते हैं उदास बिना किसी बात के, उदासी का ये मंजर मेरी समझ में नहीं आया। उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, वरना किसी ने मुझे कहाँ सताया। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, सभी अरमान पूरे यहाँ कौन ही कर पाता है। हो गए जो पूरे सारे अरमान, हो गए जो पूरे सारे अरमान, तो फिर जिंदगी जिंदगी जीने का मज़ा कहाँ ही आता है। 3:30 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। तीन बजकर 36 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

कर लीजिए अपने शब्दों में अब कुछ कटौती ही सही, कर लीजिए अपने शब्दों में अब कुछ कटौती ही सही, ना जाने कब रिश्तों में कटौती शुरू हो जाए। पता नहीं आजकल किसी के मिजाज का कुछ, पता नहीं आजकल किसी के मिजाज का कुछ, कौन कब किस बात का बुरा मान जाए।

जीना है जिंदगी सुकून से तो दिल में अरमान थोड़े कम ही रखिए, लेना है सफर का मजा तो साथ में सामान थोड़ा कम ही रखिए। कब तक उठाते रहोगे ख्वाहिशों के बोझ को अपने कंधों पर तुम, कब तक उठाते रहोगे ख्वाहिशों के बोझ को अपने कंधों पर तुम, ख्वाहिशों को छोड़कर सुकून को अपने साथ में रखिए। बीत ही जाएगी ये जिंदगी बड़े आराम से तुम्हारी, बीत ही जाएगी ये जिंदगी बड़े आराम से तुम्हारी, बस अपने साथ फिजूल के बवाल थोड़े कम ही रखिए। 3:47 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपने अगले परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप में अमरीका के न्यूजर्सी में फ्रांस और स्वीडन के बीच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला चल रहा है। फ्रांस ने 2 गोल की बढ़त बना ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज का दिन कुछ नया होगा। तो आइए आने वाली सुबह के इस इंतजार के साथ सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त एक बार फिर से अर्चित।

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ ही पाओगे। 4:18 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी ज़मीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको ज़मीन पर नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको ज़मीन पर नीचे, सारी ज़िंदगी तो कोई हवा में नहीं रहता। 4:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

तलाश तो मुझे अब बस सुकून की है, तलाश तो मुझे अब बस सुकून की है। ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होती, कुछ ज़रूरतें आज भी हैं, कुछ कल भी थीं और कुछ आगे भी रहेंगी।

बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। चार बजकर 36 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

0: एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.
1: गा

हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, पर हम रोना उसी का रोते हैं जो मिला नहीं। और निकल कर देखा जब घर से बाहर, और निकल कर देखा जब घर से बाहर, तब पता चला जो हमें मिला है वो बहुतों को आज तक मिला ही नहीं। 4:43 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

सिर्फ दिन रात चलने से हासिल नहीं होती मंजिलें, सिर्फ दिन रात चलने से हासिल नहीं होती मंजिलें, सही रास्ता भी चुनना पड़ता है पाने को अपनी मंजिलें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली है और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत तथा थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन, दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश की आशंका है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व फुटबॉल कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह बना ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। सिर्फ सोकर उठने को जागना नहीं कहते।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं फिर से एक बार आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम लता मंगेशकर जी की आवाज में गाए हुए एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। कभी यूं ही बिना वजह मुस्कुरा लिया कीजिए, कभी यूं ही बिना वजह मुस्कुरा लिया कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार मुस्कुराने के लिए लखनऊ ही जाया जाए। मुस्कुराइए जनाब, आप जहां पर भी हों। 5:30 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।